0: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
1: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
2: आज के की खावें झालमुड़ी ना माचर झोल।
0: How will you celebrate?
1: झालमुड़ी माचर झोल with रसगुल्ला।
3: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
4: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
5: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
0: One clip that went most viral was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
6: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
7: I think that Shiv is not, was not the only incident.
8: Tabe puran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে
9: ভরসা অন মোদি জি অ্যান এক্সট্রাঅর্ডিনারি ম্যানেজমেন্ট অ্যান অ্যাসিওরেন্স অফ কারেজ গিভেন বাই অমিত শাহ জি টু অল দ্য পিপল উই আর উইথ ইউ
10: ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ইয়ে বাংলাদেশে ঘুসপিটিয়া কে লিয়ে ইয়ে দোনো পার্টি প্রতিবাদ হয় देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
11: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
12: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
13: ओडिशा का है। महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
1: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक the confidence of industry.
14: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left Democratic Front.
15: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
0: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
1: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
2: आज के की खावें झालमुड़ी ना माचर झोल।
0: How will you celebrate?
1: झालमुड़ी माचर झोल with रसगुल्ला।
3: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
4: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
5: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
0: One clip that went most viral was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
6: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
7: I think that Shiv is not, was not the only incident.
8: Tabe puran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে
9: ভরসা অন মোদি জি অ্যান এক্সট্রাঅর্ডিনারি ম্যানেজমেন্ট অ্যান অ্যাসিওরেন্স অফ কারেজ গিভেন বাই অমিত শাহ জি টু অল দ্য পিপল উই আর উইথ ইউ
10: ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ইয়ে বাংলাদেশে ঘুসপিটিয়া কে লিয়ে ইয়ে দোনো পার্টি প্রতিবাদ হয় देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
11: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन।

0: move the ship from that particular area. That's one of the reasons that once again the Iran has started targeting UAE and also their ship in that are said to be close to Strait of Hormuz.
1: The UAE authorities there, issuing those alerts, those mobile phone alerts that had stopped off a possible missile attack. And that's exactly what we saw in Fujairah. And this is where, three Indians have also been injured in the attack. Thank you so much, Pradeep. We will keep coming back to you. For now, we're slipping into a very short break. Back with a whole lot more. Stay with us.
2: Rosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
3: Illegal migrant, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार.
4: भय से भरोसा is the transition which is happening now. भय से मुक्ति is the victory.
5: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
6: ओडिशा का है. जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की.
7: I think it will be good to bring back the confidence of industry.
8: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
9: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
10: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला.
11: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है.
12: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचे झोल.
10: How will you celebrate?
11: झालमुड़ी माचे झोल विद रसगुल्ला.
13: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
14: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
15: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की.
10: One clip that went most viral was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
16: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
17: I think that was not the only incident.
18: Tobi poran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে
2: ভরসা অন মোদি জি অ্যান এক্সট্রাঅর্ডিনারি ম্যানেজমেন্ট অ্যান অ্যাসিওরেন্স অফ কারেজ গিভেন বাই অমিত শাহ জি টু অল দ্য পিপল উই আর উইথ ইউ
3: ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ইয়ে বাংলাদেশে ঘুসপিটিয়া কে লিয়ে ইয়ে দোনো পার্টি প্রতিবাদ হয় देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार.
4: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ. भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड.
5: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
6: ओडिशा का है. जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की.
7: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक the confidence of industry.
8: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
9: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
10: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला.
11: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है.
12: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचे झोल.
10: How will you celebrate?
11: झालमुड़ी माचे झोल विद रसगुल्ला.
13: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
14: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
15: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की.
10: One clip that went most viral was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
16: We saw you campaigning, ma'am,

0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
1: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
9: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
10: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचर झोल।
8: How will you celebrate?
9: झालमुड़ी माचर झोल with रसगुल्ला।
11: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
12: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
13: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
8: One clip that went most viral was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
14: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
15: I think that was not the only incident.
16: Tobe poran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
0: ভরসা অন মোদি জি, অ্যান এক্সট্রাঅর্ডিনারি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাসিওরেন্স অফ কারেজ গিভেন বাই অমিত শাহ জি টু অল দ্য পিপল, উই আর উইথ ইউ।
1: ইলিগ্যাল মাইগ্রেন্ট, ইয়ে বাংলাদেশে ঘুসপিটিয়া কে লিয়ে ইয়ে দোনো পার্টি প্রতিবাদ হয়, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक the confidence of industry.
6: The people of Kerala understood the real politics of CPM and I left the Democratic Front.
7: And that kind of

0: Let's begin with breaking news coming in, and this is breaking news coming in with the claims that the BJP is making in what it says has been a historic mandate for the BJP in the state of West Bengal. The Saffron Party has won the election with a sweeping majority, and the TMC Supremo Mamata Banerjee was handed that stunning defeat as Prime Minister Modi listed out his key promises for the state. Is Prime Minister Modi there assuring that his government will work day and night as far as the future of Bengal is concerned, calling it a beginning of a new era of development? He pledged safety for women, jobs for the young, and also measures to stop migration from the state. Highlighting his cultural outreach, we saw Prime Minister Modi donning that traditional Bengali-style dhoti, underlining his connect when it comes to the state, while laying out big promises for Bengal's future. He said, it's time for Bharosa and it's time for change.
1: Ye desh ke ujjwal bhavishya ki उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं, उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए, नहीं भविष्य की बात होनी चाहिए।
2: तो ये जीत काफी संघर्षों के बाद हम कह सकते हैं कि वर्षों तक वामपंथ के पूरे पश्चिम बंगाल को जिस प्रकार से हिंसक वातावरण में तृणमूल की सरकार ने जिस प्रकार से तानाशाही रवैये में वहां की जनता को रखा था, एक पूरा भय का वातावरण वहां के लोगों के बीच में बना हुआ था। और मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उस भय के वातावरण से नरेंद्र मोदी के भरोसे के वातावरण में जनता आई है, हम स्पष्ट रूप से अपने नेतृत्वकर्ता का अभिनंदन करते हैं।
0: And let's get you breaking news coming in from the state of West Bengal. There are BJP leaders who are claiming that the TMC exodus is likely, saying that MPs and MLAs and workers may be switching sides soon to the Saffron camp, signalling an influx from the All India Trinamool Congress in the days ahead. The BJP says will be selective in accepting incoming TMC leaders and cadre. Let's listen in to what Kailash Vijayvargiya, the senior leader of the BJP, had to say.
3: ममता जी की राजनीति का तो सूर्यास्त हो गया है, और सूर्यास्त तक तो मतगणना समाप्त हो जाएगी। तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वो कह रही हैं।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
2: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
3: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
4: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
5: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
6: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
7: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
8: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
11: सबका राजा आर प्योर मसाला।
12: Launch control 0 to 100.
13: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
14: This car makes no sense, yet it makes every sense.
15: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
13: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
0: Meetha. या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा आते और मसाला।
3: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
4: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
5: This car makes no sense, yet it makes every sense.
6: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
4: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
7: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
2: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
3: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
4: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
5: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
6: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
7: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
8: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
9: Launch control, 0 to 100.
10: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
11: This car makes no sense, yet it makes every sense.
12: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
2: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
3: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
4: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
5: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
6: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
7: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
8: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
9: अरे मेरे राजा,
11: सबका राजा आर प्योर मसाला।
12: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
13: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
14: This car makes no sense, yet it makes every sense.
15: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
13: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
4: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी पट्टी पर है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
5: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
6: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
7: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
8: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
9: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड the real

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे.
1: Let's begin with breaking news coming in, and this is breaking news coming in with the claims that the BJP is making in what it says has been a historic mandate for the BJP in the state of West Bengal. The Saffron Party has won the election with a sweeping majority, and the TMC Supremo Mamata Banerjee, who has handed that stunning defeat as Prime Minister Modi listed out his key promises for the state. It's Prime Minister Modi there assuring that his government will work day and night as far as the future of Bengal is concerned, calling it a beginning of a new era of development. He pledged safety for women, jobs for the young, and also measures to stop migration from the state. Highlighting his cultural outreach, we saw Prime Minister Modi donning that traditional Bengali-style dhoti, underlining his connect when it comes to the state, while laying out big promises for Bengal's future. He said, it's time for Bharosa and it's time for change.
2: Ye desh ke ujjwal bhavishya ki उद्घोषणा का दिन है. ये भरोसे का दिन है. भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर. मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं उसमें बदलाव आना चाहिए. आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए. भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए.
3: ये जीत काफी संघर्षों के बाद हम कह सकते हैं कि वर्षों तक वामपंथ के पूरे पश्चिम बंगाल को जिस प्रकार से हिंसक वातावरण में तृणमूल की सरकार ने जिस प्रकार से तानाशाही रवैये में वहां की जनता को रखा था, एक पूरा भय का वातावरण वहां के लोगों के बीच में बना हुआ था. और मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उस भय के वातावरण से नरेंद्र मोदी के भरोसे के वातावरण में जनता आई है, हम स्पष्ट रूप से अपने नेतृत्वकर्ता का अभिनंदन करते हैं.
1: And let's get you breaking news coming in from the state of West Bengal. There are BJP leaders who are claiming that the TMC exodus is likely, saying that MPs and MLAs

0: In what is a historic mandate for the BJP in West Bengal, the Saffron Party has won the election with a sweeping majority. TMC Supremo Mamata Banerjee was handed a stunning defeat as Prime Minister Modi listed out his key promises for the state and assured that his government will work every day, 24 hours, for a better future for Bengal, calling it the beginning of a new era of development. He also pledged safety for women, which was a key poll concern and a key poll issue. He also mentioned and spoke about jobs for the young people of Bengal and measures to stop migration from the state. Highlighting his cultural outreach, Prime Minister Modi was seen donning a traditional Bengali-style dhoti when he arrived at the BJP headquarters yesterday evening after that landmark victory. Prime Minister Modi underlined his connect with the state while laying out big promises for Bengal's future and saying that in the very first cabinet meeting, central schemes will be rolled out. Listen in.
1: देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं, उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
2: और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को और पश्चिम बंगाल की विरासत को किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और मैं मानता हूं पूरे देश की जनता ने जो कसक कुछ रह गई थी 2024 के, उस कसक को, जनता के मन में जो टिस्ट था, उसको कहीं ना कहीं लगातार विजय सी देकर जनता अपने मन के भावना को व्यक्त कर रही है।
3: पार्टी जब मुझे जो काम दिया, मैं उसको करने का प्रयास किया। हमारे एक कार्यकर्ता मेरे साथ दिया। आज खड़गपुर में मुझे विधायक का टिकट दिया था, विधायक ही देना था पार्टी को, दिए है। खड़गपुर जनता ने हमें आशीर्वाद किया है, इसको हम भी

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
6: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
7: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचर झोल।
5: How will you celebrate?
6: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला।
8: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
9: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
10: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
5: One clip that went most viral was the non-interview. Crew spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
11: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
12: I think that Shiv was not the only incident.
13: Tobi poran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
14: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
15: Let's begin with breaking news coming in, and this is breaking news coming in with the claims that the BJP is making in what it says has been a historic mandate for the BJP in the state of West Bengal. The Saffron Party has won the election with a sweeping majority, and the TMC Supremo Mamata Banerjee, who has handed that stunning defeat as Prime Minister Modi listed out his key promises for the state. It's Prime Minister Modi there assuring that his government will work day and night as far as the future of Bengal is concerned, calling it a beginning of a new era of development. He pledged safety for women, jobs for the young, and also measures to stop migration from the state. Highlighting his cultural outreach, we saw Prime Minister Modi donning that traditional Bengali-style dhoti, underlining his connect when it comes to the state, while laying out big promises for Bengal's future. He said, it's time for Bharosa and it's time for change.
16: Ye desh ke ujjwal bhavishya ki उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए।
17: ये जीत काफी संघर्षों के बाद हम कह सकते हैं कि वर्षों तक वामपंथ के पूरे पश्चिम बंगाल को जिस प्रकार से हिंसक वातावरण में तृणमूल की सरकार ने जिस प्रकार से तानाशाही रवैये में वहां की जनता को रखा था, एक पूरा भय का वातावरण वहां के लोगों के बीच में बना हुआ था, और मैं मानता हूं
15: Welcome back, and let's now focus on Tamil Nadu, where actor turned politician Vijay delivered the blockbuster of his life and Thalapathy Vijay yesterday, celebrating his debut, a success with his parents and with his family.

0: It's time for Bharosa and it's time for change.
1: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है. ये भरोसे का दिन है. भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर. मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं उसमें बदलाव आना चाहिए.

0: घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रैप केस की फाइलें खुलेगी।
1: On the other was one of the victims of Sandesh Kali horror, Rekha Patra. Despite a debacle in the Lok Sabha elections, Rekha didn't give up, despite a loss by over 3 lakh votes.
2: RJ car ki ghatna ne puri duniya mein Bengal ko sharmsar kiya aur saalon tak Sandesh Kali mein ye Trinamool Congress ke gunde महिलाओं का शोषण करते रहे। एक घुसपैठिए महिलाओं का शोषण करते रहे, ममता बनर्जी आंख मूंद कर बैठी रहे।
1: In 2026, Rekha donned the saffron yet again to contest from the Hingalganj constituency. Her opponent, TMC's Anand Sarkar.
3: संदेश काली से टीएमसी कभी नहीं जीत पाएंगे। ममता बनर्जी खुद ही बोल रहे हैं, 8 बजे से पहले आप घर से मान निकलो, 8 बजे से पहले आप घर में घुस जाओ।
1: From Sandesh Kali to Pani Hathi, the faces were different, but the fight was the same. This was a fight of Ma and Mati.
2: भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड़बा।
1: Their victory is not just electoral, it's a statement of Bengal's resolve that the politics of women's safety can no longer be reduced to slogans. Bureau Report, NDTV.
4: With that, time for us to slip into a short break, but we'll continue bringing you all the latest developments in both Tamil Nadu and West Bengal. Do stay tuned.

0: একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসি, তবে একলা চলো রে।
1: মিঠা ইয়া নমকিন চাহে জেসে খাও, 100% সুজি সে বনি আর পিওর ভার্মিসেলি, স্বাদিষ্ট সেহতমন্দ হর রোজ।
2: The latest what you see on your screens right now is actor Vijay. He's reached the TVK headquarters. Hectic parlays happening there since the TVK scored a century in its debut match. What you see on your screens right now after that bumper win, actor Vijay Thalapathy Vijay reaching the headquarters of the political outfit that has trumped both Dravidian parties yesterday in that big verdict. All eyes now on how the final figure of 118 will be reached by this party. Remember, it scored a century, but it's about 10 short of the magical number, the halfway mark. Let's get in my colleague Vasudha for more details on this. She has all the updates and she's been working the
3: नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका आयुष्मान की पाठशाला में वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के मौके पर।
4: आयुष्मान, मैं भी आपके पाठशाला का हिस्सा बनना चाहती हूँ। अरसे हो गए स्कूल गए मुझे, कैन आई जॉइन योर पाठशाला?
3: ऑफ कोर्स यू शुड।
4: अगर हम बच्चों की बात करें आयुष्मान, आपके पाठशाला की बात करें, मेरे को लगता है मेरा मन है मैथ सिखाने का। मैथ से शुरुआत करें क्योंकि बच्चों को आज हम हैंड हाइजीन डे के मौके पर थोड़ी सी मैथ सिखा दे। Were you good in maths?
3: I was terrible in maths. मतलब गणित में बिल्कुल ही खत्म। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना, वो मैथ्स से बहुत दूर तक रिश्ता नहीं होता उनका। But I'm sure आप लोगों को मैथ्स पसंद है?
4: मैथ्स पसंद है?
5: Yes!
4: तो क्लास मैथ्स से शुरू करें?
5: Yes!
4: So आयुष्मान, I'm just going to take the kids through some data, some statistics on hand hygiene. So let's start. बच्चे ready? सबसे पहले मैं शुरू करूंगी WHO क्या कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहता है अगर हम अच्छी तरह हाथ धोएं तो 50-70% हेल्थ केयर के इन्फेक्शन कम किए जाते हैं। सो 50-70% कितने प्रतिशत कम होते हैं? 50-70%। सेकेंडली, यूनिसेफ कहता है कि इफ़ वी वॉश आर हैंड्स विद सोप, यानी कि अगर हम बच्चों हाथ साबुन से धोए, करीब 40% केसेस डायरिया के कम होते हैं। सो 40% रिडक्शन इन डायरियल केसेस। And coming to our campaign, Detol Banega Swasth India, when we talk about absenteeism, yaane ki jo bachche school nahi jate, absent hote hain bimar padne ki wajah se, 39%, yaane ki 39% kam hote hain. So ye tha mera maths ka lesson. Ayushman, aapne dekha ki haath dhona kitna zaruri hai aur kitna farak lata hai, infection se ladta hai, bachche school ja pate hain, and most importantly, no absenteeism.
3: तो देखा आपने हाउ हैंड वॉशिंग हेल्प्स टू रिड्यूस इलनेस एंड इन्फेक्शन, यानी कि आप स्कूल जा सकते हैं रोज, सो नो एब्सेंटिज्म। स्कूल जाने का मन करता है रोज? झूठ बोल रहे हैं।
4: हमें तो मजा नहीं आता था। आयुष्मान, दैट वाज माय मैथ्स लेसन, अब आप बच्चों को थोड़ा मैथ सिखा दें।
3: मुझे, मैं मैथ सिखाऊंगा? देखो पहला सवाल, कोशिश करता हूँ, इस लेवल की मैथ्स तो मुझे आती है वैसे, मैं इनके साथ ही बैठ जाता हूँ। हाँ, तो पहला सवाल ये है कि अगर हम सिर्फ 20 सेकेंड्स हाथ धो लें तो क्या होता है? कौन आंसर देगा? आप साथ बैठो, अभी बताओ।
6: बीमार नहीं पड़ेंगे।
3: वाह अंबिका, आपका ये डेटा जो है ना काम आ गया, बोल रही बीमार नहीं पड़ेंगे।
4: वेरी गुड। आपका नाम? चार्वी। वेरी गुड
3: चार्वी, बिल्कुल सही, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं सही तरीके से सिर्फ अगर 20 सेकंड हाथ धो लिए तो आप बहुत बीमारियों को रोक सकते हैं। करेक्ट?
4: यस।
3: तो बताओ बच्चों, दिन में कितनी बार हाथ धोने चाहिए और कब कब? कौन बताएगा? आप बताओ।
6: खेलने के बाद, आफ्टर प्लेइंग, बिफोर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग।
4: वेरी गुड,
3: वेरी गुड।
4: और कोई बच्चा अगर ट्राई करना चाहे?
3: स्फूर्ति के लिए तालियां।
4: स्फूर्ति के लिए तालियां।
3: तो सीधी सी गिनती हुई, ज्यादा धोना इक्वल्स टू कम बीमारी। ठीक है, ये मानते हैं आप लोग? आप सच में हाथ धोते हैं क्या? कहने के लिए बोल रहे हैं। ये मम्मी ने सिखाया था कि स्कूल में सिखाया था? मम्मी ने नहीं सिखाया? बोथ, बोथ, गुड।
4: बोथ ने सिखाया, तो ये सिर्फ भी आने की स्कूल पर भी।
3: तो ये सिर्फ एक क्लास नहीं है, इट्स अ हैबिट। व्हेन मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज चेंज दैट हैबिट, ओनली देन विल आवर कंट्री बिकम स्ट्रांग। तो पूरा देश बनेगा स्वस्थ।
4: एब्सोल्युटली आयुष्मान, लेकिन इस पाठशाला में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर तेजस देवेंद्र गोहिल को, जो चीफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इन्फेक्शन कंट्रोल एडवाइजर भी है लीलावती हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर से।
3: तो बच्चों, आपको मम्मी ने समझाया, स्कूल में समझाया, अंबिका और आयुष्मान ने समझाया, अब डॉक्टर समझाएंगे आपको. डॉक्टर का समझाना भी जरूरी है ना. तो वी हैव कॉल्ड डॉक्टर गोहिल फ्रॉम लीलावती हॉस्पिटल. माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और आपको ये बताएंगे कि जर्म्स कैसे फैलते हैं और उसका क्या क्या आपको हाइजीन कैसे रखना है. ठीक है, आर यू रेडी? प्लीज वेलकम डॉक्टर गोहिल फ्रॉम लीलावती हॉस्पिटल.
4: थैंक यू सो मच डॉक्टर गोहिल, आप आयुष्मान की पाठशाला में आए.
7: थैंक यू. सो बच्चों, आपको जर्म्स मतलब क्या होता है पता है क्या? व्हाट आर जर्म्स? जर्म्स मतलब कीटाणु होते हैं. अगर ये कीटाणु हमारे शरीर में, बॉडी में अगर चले जाते हैं तो हमको अलग अलग इन्फेक्शन हो सकते हैं. इन्फेक्शन यानि हमको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लाइक खांसी, सर्दी, ये हो सकता है. डायरिया हो सकता है, जिसको हम दस्त भी बोलते हैं. तो ये इन्फेक्शन होते हैं. ये इन्फेक्शन कैसा फैलता है? तो जर्म्स ये हमारे हाथों से ही फैलते हैं. तो हमारा हाथ ये स्वच्छ होना चाहिए, हमेशा क्लीन होना चाहिए. हम एक एक्टिविटी से हम लोग ये भी जानेंगे कि ये फैलता कैसे है जर्म्स. एक स्टूडेंट से या एक इंसान से दूसरे इंसान के हाथों में ये जर्म्स कैसा फैलता है, ये हम एक्टिविटी से देखेंगे.
4: लेकिन एक्टिविटी के पहले
3: एक क्वेश्चन है आपके लिए डॉक्टर.
4: मेरे पास भी बहुत सवाल है.
3: एक क्वेश्चन ये है कि जर्म्स आर लाइक टाइनी मॉन्स्टर्स. कभी कभी आपके हाथ बिल्कुल स्पार्कली क्लीन होते हैं, उसके बावजूद भी आपको लगता है जर्म्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं.
7: हाँ, तो जर्म्स ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसको हमारे नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं. ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं. इसीलिए हमको हाथ धोना बहुत ज़रूरी है. उसीलिए वो एक्सरसाइज हमको करना है कि ये जर्म्स हमको दिखते नहीं हैं, बावजूद भी हमारे हाथ में होते हैं और कैसे फैलते हैं.
4: बच्चे, आर यू रेडी फॉर द एक्टिविटी?
5: यस.
7: तो
4: अब आप डॉक्टर गोयल हमें समझाइए, बच्चों को समझाइए, ये ग्लिटर हम इस्तेमाल करें जर्म्स के जैसे. सो ओवर टू यू. ये एक्टिविटी फन कैसे बनेगा?
7: ये हमारा एक ग्लिटर एक्टिविटी होगा. तो ये ग्लिटर हम लोग, ये ग्लिटर है, इट विल एक्ट एज अ जर्म. ये कीटाणु एक्ट करेगा. ठीक है, ये हम कुछ बच्चों के हाथ में लगाएंगे. फिर जिस बच्चों के हाथ में हमने नहीं लगाया है, दे विल गो एंड शेक हैंड टू द अदर चिल्ड्रन एंड हम देखेंगे कि वो उसके हाथ में, जिसके हाथ में हमने ग्लिटर नहीं लगाया, उसमें कैसा ट्रांसमिट होता है. तो जर्म ट्रांसमिट इन दिस मैनर, वाइल शेकिंग हैंड्स, वाइल हगिंग एंड ऑल.
4: दिखाओ जिन जिन के ग्लिटर. तो ये कीटाणु हैं, जो जिन हाथों पे हम ग्लिटर देख रहे हैं वो एक्चुअली कीटाणु का
7: एक्चुअली कीटाणु है. या यस, अभी अभी आपने, आपके हाथ में कीटाणु नहीं है. अभी आप इनसे हैंडशेक कीजिए. अभी आपका हाथ देखिए, अभी आपके हाथ में कितने कीटाणु आ गए. हाँ, तो कीटाणु इस तरह से ही फैलते हैं.
4: अब आप उनके हाथ में दीजिए, इसे ट्रांसफर करिए.
3: अब इनको हाथ मिलाइए.
7: आप इस कुर्सी को उठा के यहाँ पे रख दीजिए. तो इस पे
3: देखो,
7: इस पे भी कीटाणु आ जाएगा.
3: लाल कलर के कीटाणु आए आपके.
4: आप बच्चे, इस मेरे हाथ में कुछ कीटाणु दिख रहे हैं?
5: नहीं.
4: आयुष्मान सर के
3: है.
4: एक में है.
3: एक में है, एक में नहीं है.
4: और डॉक्टर सर के
3: एक
4: नहीं
3: है. बिल्कुल भी नहीं है.
4: फन एक्टिविटी करते हैं. आपके पास टॉर्चेस है, आर वी रेडी फॉर इट? आप कीटाणु देखना चाहते हो?
5: यस.
4: कीटाणु देखना चाहते हैं?
3: हम भी देखना चाहते हैं.
4: लाइट्स ऑफ एंड लेट्स गेट द टॉर्चेस. चलो बच्चे, टॉर्च निकालो.
3: बच्चों, हम देखते हैं कैसे जर्म स्प्रेड होते हैं.
4: सो मेरे हाथ तो साफ है आयुष्मान.
3: डॉक्टर गोहिल,
4: टॉर्च में देखो, आपको कीटाणु
3: फुल ऑफ कीटाणु
4: दिख रहे?
7: नहीं दिख रहे.

0: बच्चों आपने बोला कि 20 सेकंड हाथ धोने चाहिए, चलिए आयुष्मान सर को उन्हीं के पाठशाला में आइए दिखाते कि हाथ जो है वो 20 सेकंड की टेक्निक है किस तरह हाथ धोना चाहिए।
1: लेट्स गो टू द वॉश।
0: हु इज गोइंग टू लीड? आइए बच्चों,
2: इसको ये
0: हाथों के बीच, उंगलियों के बीच, नाखून।
2: सो इसका एक नहीं क्या निमोनिक है?
1: क्या निमोनिक है सर बताइए?
3: सुमन
1: सुमन
3: सुमन।
1: तो क्या क्या है? सबसे पहले
3: सीधा
1: सीधा।
0: चलो बच्चों उधर मुंह करो कैमरे पे ताकि हमारे व्यूअर्स
1: सीधा
0: देखे।
1: फिर उल्टा
3: उल्टा, फिर मुट्ठी
1: फिर मुट्ठी,
3: फिर अंगूठा
1: अंगूठा,
3: फिर नाखून
1: फिर नाखून। दैट इज सुमन,
3: दैट इज सुमन,
0: दैट इज
3: सुमन।
1: ग्रेट सर।
0: Well, बच्चों मजा आया, अब आप सब भी अपने हाथ धो सकते हैं। पर आयुष्मान सर पास हुए, क्या उन्होंने सीख लिया है? पास की फेल? पास। Well done.
1: यार ज़्यादा पीयर प्रेशर मत हो, फेल भी कर सकते हो मुझे मुझे इतनी ईगो नहीं है मेरे अंदर। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।
0: हाथ धोना बहुत जरूरी है, अभी आप लोग ने एक एक्टिविटी की है, हाथ धोना बहुत जरूरी है, प्लीज वॉश योर हैंड्स।
1: थैंक यू डॉक्टर गोहिल एंड थैंक यू अंबिका। अभी हम वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है मेरी ही पाठशाला में, अब और कुछ सीखने का मौका है। एंड वी हैव अनदर गेस्ट कमिंग अप, रवि भटनागर आने वाले हैं।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे.
1: The latest what you see on your screens right now is actor Vijay. He's reached the TVK headquarters. Hectic parlays happening there since the TVK scored a century in its debut match. What you see on your screens right now after that bumper win, actor Talapathy Vijay reaching the headquarters of the political outfit that has trumped both Dravidian parties yesterday in that big verdict. All eyes now on how the final figure of 118 will be reached.
2: Welcome back to NDTV Banega Swasth India. और यह है आयुष्मान की पाठशाला. कहने को आयुष्मान की पाठशाला है, लेकिन आयुष्मान ने खुद यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है इन अमेजिंग बच्चों से, डॉक्टर गोहिल से. आगे भी सीखने का मौका मिलेगा. क्या होने वाला है आगे?
3: बहुत मज़ेदार चीज़ें होने वाली. इनफैक्ट थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर पाठशाला. मैंने भी बहुत कुछ सीखा है. लेकिन आयुष्मान, जो बच्चे सीख रहे हैं, जो ये हाइजीन करिकुलम के बारे जो बच्चे एक्चुअली ऑन ग्राउंड सीख रहे हैं, उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी रैकेट से रवि भटनागर को, जो कम्युनिकेशन एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के डायरेक्टर साउथ एशिया मेनार और अफ्रीका से हैं. वो सालों से ही इज़ बिन रियली वर्किंग हार्ड बिहाइंड द सीन्स एंड वी कुड सी कि बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है. साथ ही जो सी द रियल इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड, मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर किरण दिनकर पाटिल को, जो हेडमास्टर है प्रभा देवी प्राइमरी मराठी स्कूल के, जो मुंबई से ये स्कूल है. तो कैन वी प्लीज़ हैव मिस्टर रवि भटनागर एंड मिस्टर पाटिल ऑन स्टेज. सो द मैन बिहाइंड अ लॉट व्हिच हैज़ हैपेंड ऑन आवर कैंपेन, मिस्टर भटनागर एंड मिस्टर पाटिल, जो प्रिंसिपल है. आइए सर.
2: तो रवि जी, आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड क्या हुआ है और करिकुलम क्या चेंज लेकर आया है. आप बहुत पैशनेट हैं इसको लेकर, अब काफ़ी साल हो गए हैं हमें बात करते हुए, बट जितनी बार आपसे बात करता हूँ कुछ सीखने को मिलता है. क्या हुआ है ऑन ग्राउंड?
4: सो सबसे बड़ी बात है आयुष्मान जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फ्रॉम गौरव जैन, हु इज़ आर EVP फॉर साउथ एशिया, एंड फॉर दिस वंडरफुल पार्टनरशिप ऑफ वर्किंग टुगेदर. लास्ट ईयर के अगर मैं आंकड़े देखता हूँ तो 40 बिलियन हैंड वॉशिंग हम ट्रिगर कर पाए हैं अक्रॉस इंडिया. मैं नहीं बोलता कि ये इनफ है, और ज़्यादा की ज़रूरत है. वो लास्ट साल था, ये नया साल है. लास्ट साल हम लोग अराउंड 30 मिलियन स्कूल किड्स तक हमने रीच किया था थ्रू आर प्रोग्राम. अभी की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव टच्ड ऑलमोस्ट अराउंड 35 मिलियन स्कूल किड्स. From 1 million schools, we have reached to 1.20 schools now. So 0.20 million has been increased there. There has been a lot of new stuff which is happening, which is super engaging. There is a lot what we are going to see from the Lego artist. We are going to see the games, what we have been playing, the accessibility curriculum, the ambitions to make sure no one is left behind. We have a lot of kids which we have been interacting with, and what has changed for us fundamentally is more deeper engagement, more playways, methods of education, especially on hygiene. And one major shift is a very beautiful marriage between few dots. As you may have also noticed, there was a green dot on the screen.
2: Yes.
4: So when our conversation started between you, me, NDTV, and with our stakeholders, they said, like, you know, none of the dot is complete in itself. We need to have a deeper rooted perspective. And we thought, like, this is the first time with Ayushman we will get on something which is very fresh. It's a marriage between the red dot, green dot, violet dot, and blue dot. So each dot represents something. And just from hand washing to talking about menstrual hygiene management, which is by the red dot, actually represents that. The blue dot comes from our work around sanitation. And then you have the violet dot, which is for overall health. So how each dot is actually overlapping with each other. And one is incomplete without another.
3: So true, and I think Ayushman Ravi ji ne itni achhi tarah ise dala about the, you know, integration of the four dots.
2: Aur abhi principal sir, pata hai kya, hamare time pe na principal se dar lagta tha. Ab main bahut khush hu ki aajkal ke jo teachers aur principal hain, bacche unse bahut aur baat kar sakte hain, khul ke baat kar sakte hain. Main aapse ye puchna chahta hu ki aapke jab bhi introduce hua tha, hygiene introduce hui thi, तो इससे अटेंडेंस में क्या तब्दीली आई है, क्या बढ़ी है अटेंडेंस, उनमें क्या इम्पैक्ट हुआ है बच्चों में?
5: जब ये हमारे स्कूल में चालू किया तब बच्चों का बीमारी का प्रमाण कम हो गया और बच्चे का अटेंडेंस बढ़ गया और बच्चे भी ये सब चीज़ें है उसका यूज़ करने लगे हैं और हाइजीन का उपयोग बच्चे कर रहे हैं और हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ भी अभी इसके साथ बढ़ रही है और बीमारी का प्रमाण कम हो गया है और स्कूल का भी उस जब एरिया में जितने स्कूल बच्चे हैं जितने पेरेंट्स हैं वो स्कूल के हाइजीन के वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं और अच्छी तरह ये सब बच्चे छुट्टी में जब खाना खाने जाते हैं तब हैंड वॉश करते हैं, टॉयलेट जाते हैं तब हैंड वॉश करते हैं और मैं रवि भटनागर जी को थैंक्स बोलूँगा कि हमारे स्कूल में उन्होंने ये सब प्रोवाइड किया है और बच्चे ज़्यादातर उसका यूज़ कर रहे हैं और अपने घर में भी यूज़ करने के लिए पेरेंट्स को बोल रहे हैं।
3: वेल थैंक यू सो मच पाटिल जी, आप आए और अपनी बच्चों की जर्नी हमारे साथ शेयर की। रवि आयुष्मान, आइए अब देखते हैं और कुछ करते हैं कुछ मज़ेदार, चलते हैं ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स की तरफ कि किस तरह बच्चे प्लेवे तरीके से यू नो द राइट वे हमें किताबों के जरिए से पढ़ाया जाता था। लेकिन रवि आयुष्मान आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं मृणाल शाह जो फाउंडर है संडे ब्रिक्स के, बच्चों के साथ ही वेरी बिजी, बच्चे बहुत बिजी लग रहे हैं, बच्चे मजा आ रहा है?
2: Yes! हमें आपको मजे करते हुए देखकर बहुत मजा आ रहा है,
3: हमें अपने दिल याद आ रहे हैं ब्लॉक्स के साथ।
2: मेरे तो अभी भी दिन वो ही हैं,
3: मैं ब्लॉक्स बनाती हूँ तब तक हम।
2: हाँ मृणाल, आपसे पूछना चाहता हूँ प्ले बेस्ड लर्निंग कैसे वर्क करती है, कितनी क्रिटिकल है स्पेशली हैंड वॉशिंग को लेकर, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं हाइजीन बढ़े इंडिया में और हैंड वॉशिंग कैसे प्रमोट की जाए, अब ये खेल के जरिए कैसे प्रमोट हो रही है, हाउ इफेक्टिव इज इट?
6: सो फर्स्टली प्ले इज द बेस्ट वे द माइंड कैन लर्न थिंग्स राइट, तो हम सारी चीज़ों को वे मेकिंग इट टैक्टाइल हैंड्स ऑन, विच मीन्स वेन यू टच थिंग वेन यू फील थिंग यू जस्ट रिमेंबर इट बेटर, सो हैंड्स ऑन माइंड्स ऑन। एंड टिपिकल स्कूल में ये होता है कि यू आर डूइंग पैसिव लर्निंग, आपको टीचर बताती है एंड यू आर जस्ट लिसनिंग, बट दिस इज एक्टिव लर्निंग वेयर आई एम टेलिंग देम समथिंग, दे रिक्रिएटिंग समथिंग। सो मैंने जो उनको सिखाया है व्हेन दे रिक्रिएट थिंग्स दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट आई एम बीन टेलिंग देम, हाउ डू दे अंडरस्टैंड दैट, सो द वर्ल्ड वी गेट टू नो थ्रू प्ले हाउ डू दे सी द वर्ल्ड, सो दैट्स हैपनिंग हियर।
2: जब तक आप उनके साथ बच्चे बनकर खेलते नहीं हैं तब तक वो मैसेजिंग जाती नहीं है।
3: So rather than being a dictator, when you're with them doing something, I think the impact. Ravi, what do you feel on that?
7: So the biggest difference here

0: The things that we learn are abstract, but when we touch and feel, it becomes concrete. So we talk about germs, you know, we've told them about germs, but nobody knows.
1: Clean hands, healthy body. Clean hands, safe family. Clean hands,
2: strong India.
1: And tabhi banega swasth
3: India.
1: True, we got it right. Thank you so much. Well, Ayushman, what a fun class that has been. Bachcho, maza aaya?
4: Yeah!
2: इनसे ज्यादा मुझे मजा आया ये
1: मुझे भी मजा आया व्हाट अ फन क्लास ग्रेट पाठशाला वेल डन आयुष्मान
2: थैंक यू
1: बहुत अच्छे टीचर निकले आप ऑनेस्टली व्हेन वी टॉक अबाउट हैंड वॉशिंग द डिटॉल स्कूल हाइजीन प्रोग्राम हैज ट्रिगर्ड 43 बिलियन हैंड वॉशेस
2: वाओ
1: नाउ दैट्स वन हैबिट ऑफ कोर्स टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया And you really are the change. Our campaign, you know, this year talks about being the change. And I want you to take this forward so that we can reach and trigger this habit to millions of kids across our country.
2: Let's go for it. Change बच्चों से आया है. बच्चों आपकी वजह से change आया है. पता है आपको इतने सारे लोग जो hygiene habits में develop हो रहे हैं, आपकी वजह से हो रहे हैं. अपने लिए तालियां बजाओ पहले.
1: तालियां.
2: Let's go towards that side. Come. I'll go with green. I'll go with the red.
1: Okay.
2: बच्चों होली जा चुकी है लेकिन अभी मौका फिर से है रंग लगाने का अपने हाथों पे और यहाँ पर हमें अपने हाथ चिपका ओके आर यू गाइस रेडी
4: क्या
2: पक्का
4: yes!
2: नहीं तुम पर नहीं

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर प्योर मसाला।
5: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
6: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
7: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचर झोल।
5: हाउ विल यू सेलिब्रेट?
6: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला।
8: यू नो यू रिमेंबर यू प्रॉमिस्ड मी दैट यू विल कम टू कबिनी एंड डू एन इंटरव्यू विद मी। यू लाइक गोइंग टू द फॉरेस्ट?
9: दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ आवर स्टेट दैट टू द एंटायर कंट्री दैट आवर केरला इज सेक्युलर।
10: ये विषय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
5: वन क्लिप दैट वेंट मोस्ट वायरल was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
11: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
12: I think that was not the only incident.
13: Tabhi puran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
14: মিঠা या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
15: The latest what you see on your screens right now is actor Vijay. He's reached the TVK headquarters. Hectic parlays happening there since the TVK scored a century in its debut match. What you see on your screens right now after that bumper win, actor Talapathy Vijay reaching the headquarters of the political outfit that has trumped both Dravidian parties yesterday in that big verdict. All eyes now on how the final figure of 118 will be reached by this party. Remember, it scored a century, but it's about 10 short of the magical number, the halfway mark. Let's get in my colleague Vasudha for more details on this. She has all the updates and she's been working the phones to get us all inside scoop on what TVK is going to be doing next.
5: Gauri, actor turned politician, TVK chief Vijay.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
3: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
4: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचर झोल।
2: How will you celebrate?
5: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला।
6: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
7: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
8: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
2: One clip that went most viral was the non-interview crew.

0: इसका पहले आवाज उठाए थे कि महाराष्ट्र में हरियाणा में वोट चोरी हुआ है, ईवीएम वीवीपैट में स्लिप बदला गया है, क्या बंगाल में भी इस तरह से फिर दोहरा?
1: बंगाल में और थोड़ा ज्यादा हुआ, क्योंकि हम लोग जैसा फाइट किया इंची में इंची पे इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तो अभी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ देखा, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ, और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच अप कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे, आप हमको बताइए जब लोगों ने वोट देता है मशीन में उसका चार्ज बैटरी चार्ज 40 का है 1995 कैसे हुआ? कैसे हुआ? आई एम रेजिंग द क्वेश्चन, व्हाई दिस नेस्ट आउट पेपर, व्हाई दे डिडंट अलाउ आवर काउंटिंग एजेंट एंड मी टू अटेंड द काउंटिंग, व्हाई दे टॉर्चर द पीपल एंड डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ सीआरपीएफ एंड द इलेक्शन ऑफिसर्स, दे वर थ्रेटनिंग इनसाइड, आई हैव सीन, दे वर थ्रेटनिंग द आरओ इन प्रेजेंट ऑफ मी, but please remember I have every document with me, because at that time I send all my information to Bengal CEO, first I have written a letter, then they snatched this paper from me, then I have written second letter to RO at about 4 o'clock, they didn't give us AC receipt, but not only me, the other candidates also, but no justice. When DO told me that Mamta ji, आप आपको एजेंट को बुलाइए, वो तो पास ही नहीं है उसका पास, सब छोड़ के छीन लिया, हम बोला कैसे घुसेंगे, तो बोला हम पास बना देते हैं आप बुला लीजिए, देन आई सेड ओके यू गिव मी 2 hours टाइम सो दैट आई कैन कॉल माई पीपल, आई वेटेड, देन आवर पीपल केम, सीआरपीएफ डिड नॉट अलाउ टू एंटर, नंबर टू हु आर देयर प्रेजेंट, आई सेड ओके वो आर नॉट प्रेजेंट, आई कैन सी एज अ काउंटिंग एजेंट, that cooperation also can do, then they dhakka maar ke humko udhar se nikal diya, hamara election agent ko itna mara, counting agent ko sab ko mara, 5-6 party ko mara, so they also complain, lekin complain kisko karenge, wo to pura purchase hai na, sellable commodities, yahi hua Bengal mein, बंगाल का असली चेहरा और कोई अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक जॉइंट टायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़ने पड़ा। এটা আমরা পার্টিতে ঠিক করবো ভাই, আমি তো একা নই, একটা পার্টি আমার সাথে আছে ফুল, আমরা আসামেও কালকে একটা সিট জিতেছি, তারপরে ওখানেও অত্যাচার করতে শুরু করেছে, সুস্মিতা দেবী আমাকে জানালো, পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি আমরা পার্টিতে বসে ঠিক করবো, আপনারা টাইম টু টাইম জানতে পারবেন, চিন্তা কোনো কারণ নেই, কেন কিসের জন্য, আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাবো, হারলে আমি যদি স্বপ্ন দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম, এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট দেয়ার আইজ, জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট, now also I want to say that we didn't lose the election, it is their forceful attempt to defeat us, officially they may through election commission can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. কি বলেছিলেন শুনুন, রাজনীতিতে অমিত শাহ বলেছিলেন সবাইকে দড়িতে করে ঝুলিয়ে পেটানো হবে, আগে তাকে জিজ্ঞেস করুন তারপরে অভিষেক ব্যানার্জি উত্তর দেবে, আর প্রেসটা আমি করছি, অভিষেক ব্যানার্জি করছে না, যার জিজ্ঞেস করার আমাকে জিজ্ঞেস করুন। কোন সন্ত্রাস হয়নি, সব মিথ্যে কথা, এনআইএ থেকে শুরু করে একটা চকলেট বোম ফাটালেও কতবার 355টা টিম পাঠিয়েছে বাংলায়, এখন হিউম্যান রাইটস কোথায়, সিনোটাইপ কমিশন কোথায়? উইমেন কমিশন কোথায়? চিলড্রেন কমিশন কোথায়? কোথায় ঘুমোচ্ছে কুম্ভকর্ণের মতো নাক ডেকে? লজ্জা থাকা উচিত, নির্লজ্জ, বেয়ায়া।
2: नहीं
1: कर सकता है। आप लोगों ने सबसे ज्यादा साबोटेज किया है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द मॉर्निंग। आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। वेट वेट वेट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। हां निश्चय निश्चय निश्चय नहीं नहीं चलो चलो
3: The big breaking news a day after Mamata Banerjee lost West Bengal. She says she will not be tendering her resignation. She says the mandate was stolen.
1: Digested all the atrocities of BJP, but now I am free bird, so I can go anywhere, I can fight anywhere. So I'll be on the street. Thank you so much. Ami rastay chilam, rastay thakbo, rastay.
4: Hello.
3: Banerjee there addressing the media day after BJP's emphatic win in the state where they got over 200 seats. However, Mamata Banerjee challenging this, saying that she will not be tendering her resignation, saying the mandate has been stolen from us, and also apologizing to the people of West Bengal that she could not protect their votes. She talks about how there has been violence, how many of the poll observers from the Trinamool Congress weren't allowed into the counting booths, also talking about her own manhandling that took place yesterday. She says that when she went in Bhavanipur to the counting center, that she was manhandled. However, it was not caught on CCTV. She claims that she has never been treated like this. She was the chief minister and she was kicked as well, as something said. She says it was chaotic yesterday, I was manhandled, and that is why she did not address the media yesterday. But today she is speaking to the media about this. She also said that a 5-member fact-finding committee will be put into place to go and travel to various constituencies and polling booths and to do a full report on the kind of violence that was unleashed yesterday on the Trinamool Congress workers. So a big charge by Mamata Banerjee, saying that she has not lost this election, she will not give her resignation, she will not be going to the Raj Bhavan, and she says she will take the fight to Delhi as well. She will challenge the BJP in Delhi. She says that my request to the media, don't show me, but please ensure there is no atrocities on the people of the state, claiming that violence has been unleashed. She says when the judiciary is not there, when the Election Commission of India is biased and the government wants one party rule, the wrong message is going to the world. So Mamata Banerjee there speaking out a day after the results of the West Bengal elections, where the BJP got over 200 seats and Mamata Banerjee lost power after 15 years. Mamata Banerjee, however, questioning this defeat, saying, "I will not tender resignation. That no candidate indulge in any sabotage," she says. And she also talks about the kind of violence that is taking place. So several allegations. She says the CEC is the villain of this election. That is the one big charge that she has made. She also says that 100 seats have been stolen, a black day for democracy. So Mamata Banerjee, this is something she said yesterday as well. She says that 100 seats were

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
2: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
3: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
4: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
5: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
6: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
7: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
8: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
9: Welcome back. Let's now focus on West Asia, where once again there are reports of attacks, and this time it's the UAE that has claimed that Iran has attacked its Fujairah oil port. And remember, three Indians were also injured in that attack. So let's talk about, you know, the latest that we are hearing now regarding this. And you know, as far as the UAE claims are that Iranian missiles and drones were targeting the oil facility in the UAE, saying that they have been hit, although Iran has not yet reacted to these developments. Now, Prime Minister Modi, however, has also spoken on this, where he's condemned this attack on civilian facilities. And in fact, in this particular attack, three Indians are injured as well. And he has said that India stands with the UAE, condemning this attack. Now, this, he says, it is important to ensure safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz that continues to be choked for energy security globally. Now, President Donald Trump has warned Iran of severe consequences.

0: From Sandesh Khali to Pani Hathi, the faces were different, but the fight was the same. This was a fight of Ma and Mati.
1: भाइयो बहनों 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा 9 बजे पहला राउंड 10 बजे दूसरा राउंड 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय
0: देयर विक्ट्री इज नॉट जस्ट इलेक्टोरल इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ बंगाल्स रिजॉल्व that the politics of women's safety can no longer be reduced to slogans. Bureau Report, NDTV.
2: All right, word just coming in from Tamil Nadu, where Vijay has responded to the Prime Minister's victory wish and said that well-being of people is our only goal, and I look forward to the centre's support. The focus will be on the state's progress and welfare. Vijay also thanks Rahul Gandhi for his wishes and says we are committed to serving the public and to preserving cultural ethos. Okay, so this is the very latest from the man who really is the focus of all the attention after he swept to a number that nobody was expecting, unseated both Dravidian majors. The DMK did not get a majority and neither did the AIADMK. Joseph Vijay, really the cynosure of all eyes. It's over to Editor-in-Chief Rahul Kabal.
3: इस वक्त हमारे साथ एनडीटीवी नेटवर्क पर मौजूद हैं गुवाहाटी से लाइव और एक्सक्लूसिव आसाम के राजनीतिक बादशाह हैट्रिक दर्ज करने वाले और हैट्रिक के दौरान सेंचुरी मारने वाले हेमंत बिश्व शर्मा इस वक्त हमारे साथ एनडीटीवी पर मौजूद हैं. दो मैप आपके स्क्रीन पर हैं. ये 2021 का आसाम का पॉलिटिकल मैप है. यहाँ पे लोअर आसाम रीजन में फिर भी कांग्रेस काफ़ी हद तक दिख रही है और ये है 2026 का राजनीतिक मैप जहाँ जो बची कुची सीटें थी कांग्रेस की वो भी पहले की तुलना में पहले ही 30 थी अब और भी घट के 21 हो गई. हेमंत बिश्व शर्मा सेंचुरी वो भी हैट्रिक के साथ लोगों को लग तमिलनाडु में क्या होगा इस पर अनिश्चितता थी. पश्चिम बंगाल को लेकर सस्पेंस था. केरल में कितनी टाइट फाइट होगी. अगर लोग कन्विंस थे कि कहीं पे एक वर्डिक्ट काफ़ी क्लियर है वो आसाम का लेकिन आपको लग रहा था कि सेंचुरी इतनी बड़ी जीत आपकी दर्ज होगी 73 से 102 पार. स्वागत है और मुबारकबाद.
4: For us, it was expected primarily because in 2024 Lok Sabha election, we registered victory in 94 assembly seats. So we were around 100 number right from the 2024 Lok Sabha election. So we further consolidated and crossed 100 and we reached 102. So in Assam, it was not a major surprise. It was more or less expected that we will be somewhere around 95 to 100.
3: मेरे पास 2024 के लोकसभा के भी आंकड़े हैं. ये देखिए मैप उसमें 88 थी बीजेपी की खुद की और अब हो गई हैं 102. तो काफ़ी हद तक जो सैफरन स्वीप थी आसाम में वो और भी बढ़ गई है. जब हैट्रिक के साथ आता है साधारण तौर पे हैट्रिक के वक्त पे एक एंटी इनकम्बेंसी सी बिल्ड हो जाती है लेकिन आपने तो एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को धो डाला कांग्रेस को धो डाला यहाँ तक कि गौरव गोगोई भी हार गए. जोरहाट में मेरे को याद है आपसे मुलाकात हुई थी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले. आपने बोला था राहुल मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ तुम्हें मुझसे नोट करा लो इसको मैं हरा दूंगा कुछ भी हो जाए गौरव गोगोई जोरहाट में नहीं तब तो जीत गए. इस बार आपने हरा दिया. क्या किया आपने इस बार जो पिछली बार नहीं हो पाया.
4: I think that point of time he was not tested. But in last 1 year, people of Jorhat could see him from a very close quarter. And important point to note that he not only lost his own seat, he lost 9 out of 10 in the entire Lok Sabha constituencies. Today, in his constituency, there is only one MLA, that too from an alliance party. Congress has now no MLA from the entire Jorhat Lok Sabha constituency. So it was not a defeat, it was a complete defeat in that sense of term.
3: अच्छा हिमंतदा, इस वक्त आप एनडीटीवी के सारे चैनलों पे लाइव हो, आप एनडीटीवी इंडिया पे भी लाइव हो, इसलिए मैं आपसे हिंदी में सवाल कर रहा हूँ और मेरा अनुरोध है कि आप हिंदी में जवाब दें ताकि

0: के जरिए हिमंत बिस्वा सरमा के राजनीतिक भविष्य के बारे में क्या मैसेज दिया है?
1: मेरा नहीं लगता है कि आपको असम का रिजल्ट कोई व्यक्ति का भविष्य का साथ जोड़ना चाहिए। असम इज ए वेरी स्पेशियल केस। राहुल, मैं आपको भी जब भी मिलता हूँ हमेशा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। असम का लोग एक बहुत बड़ा समस्या में है। हम लोग अपना आइडेंटिटी को लेके हमारा भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित रहता हूँ, बिकॉज वी आर नाउ लूजिंग द डेमोग्राफिक बैटल बहुत फास्ट। टुडे असम विल हैव 40% मुस्लिम पॉपुलेशन इन दिस सेंसस, रफली अराउंड 40%। 12 से 13 जिला में हम लोग वी हैव बिकम कम्प्लीट माइनॉरिटी। सो हर चुनाव असम का लोग अपना अस्तित्व का साथ जोड़ते हैं और हमारे आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग वोट डालते हैं। सो चुनाव जीतने और हारने ये दोनों का साथ एक बहुत बड़ा बातें छुपा होते हैं कि क्या असम फाइनली इट विल बिकम ए मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। तो हमारे शंका हमारे चिंता देश का प्रदेशों से काफ़ी अलग है। सो दिस इज़ नॉट ए विक्टोरी प्रोबेबली। ये हमारे जो जूथ चलता है असम का अंदर, इसका और एक चैप्टर है।
0: हिमंत दा, जहां एक तरफ आप अपने आप को एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे साबित कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स टाइप की इंडस्ट्रीज आप असम में लेके आ रहे हैं जिसके लिए आपकी तारीफ भी हो रही है, आप पे कैंपेन के दौरान आरोप लगा हेट स्पीचेस का कि बहुत ही कॉम्युनली डिवाइसिव आपने भाषण दिए। अब जब आप उस पर लुक बैक करते हैं तो आपको लगता है कि क्या वो गलती थी? क्या आपको लगता है कि चुनाव की हीट और डस्ट में इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए? क्योंकि जिस तरह के आप प्राइवेटली रहते हैं या जो आप गवर्नेंस में कर रहे हैं, कैंपेन के दौरान जो हुआ, जो चार्जेस लगे, उस पर आपका क्या कहना है?
1: आप पहला बार मुझको लगता है आपने असम चुनाव बहुत क्लोजली फॉलो इस बार नहीं कर सका, बिकॉज बंगाल वॉज डेफिनेटली ए इम्पोर्टेंट इलेक्शन। असम में कोई हेड स्पीच नहीं हुए, हमारा चुनाव नाचते हुए गाते हुए, वी एन्जॉयड द इलेक्शन लाइक ए फेस्टिवल। एंड इलेक्शन में कोई एलिगेशन काउंटर एलिगेशन नहीं था, इट वॉज ए कम्प्लीट वी ऑब्जर्व द इलेक्शन, वी एन्जॉयड द इलेक्शन एज ए फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ में कोई हेड स्पेस नहीं था, किसी का ऊपर आरोप भी नहीं थे, कोई झमेला, कोई नथिंग। इट वॉज सिंपली हम लोग चुनाव मंच में जाते हैं, गाना गाता हूँ, डांस करता हूँ, लोग भी साथ में डांस करते हैं और सभा समाप्त हो जाते हैं। कोई मामले ही नहीं हुआ इस बार इस दौरान। और बाकी आप जो कभी मेरा स्पीच को आप हेड स्पीच मानते हैं, मैं मेरा स्पीच हमेशा सोच के देता हूँ और मैं जो भी बोलता हूँ वहाँ से बैक ट्रैक करने का कोई सवाल ही नहीं है। व्हाट एवर आई डिलीवर स्पीच आई स्टैंड बाई इट एंड आई ओ इट कम्प्लीटली।
0: नहीं, अभी जैसे वो पूरा कांग्रेस के जो चीफ स्पोक्सपर्सन है पवन खेरा का मामला है, उनको एंटिसिपेटरी बेल तो मिली, अब ये क्या वो चुनाव का मामला था या उस केस को आप आगे भी लेके जा रहे हैं? मैं कल उनसे बात कर रहा था, उनका तो हुलिया ही पूरा चेंज हो गया था, वो इतने स्ट्रेस में थे, आपने आसाम पुलिस उनके पीछे लगा दी।
1: नहीं, आसाम पुलिस अभी भी उनका पीछे में लगा हुआ है। आई थिंक ही विल बी सर्व नोटिस टू अपीयर बिफोर पुलिस स्टेशन, बिकॉज हाई कोर्ट ने उनका कोई केस खारिज नहीं किया है। थोड़ा अभिषेक मनु सिंह भी ने थोड़ा लोगों को डिस्टोर्ट करने का कोशिश किया, ही हैज जस्ट गॉट ए एंटिसिपेटरी बेल बट ही वॉज आस्क्ड टू जॉइन इन द इन्वेस्टिगेशन। सो वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा, फिर देखा जाएगा कैसे केस आगे बढ़े। बट दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट केस, दिस इज़ ए केस टू सेव आवर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। बिकॉज आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी गृह मंत्री जी का एक स्पीच यही लोगों ने डिस्टोर्ट किए थे। इस बार भी फेक डॉक्यूमेंट से इलेक्टोरल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास हुए, मतलब दिस डिस्टोर्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोर्स डॉक्यूमेंट्स नाउ बिकम ए पार्ट ऑफ कांग्रेस टूल किट। हमें देखना है वेदर इट इज ए पवन खेरा और उसका पीछे कौन है, बिकॉज मैं नहीं मानता हूँ कि ये कागज़ लेके पवन खेरा ने खाली एक राज्यसभा सीटों के लिए

0: मिसएडवांस किया. दिस मस्ट बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी. तो हमें ये केस का गहराई में जाना है.
1: नहीं, एक सवाल और इससे, जैसे आपने कुछ चार्जेस लगाए गौरव गोगोई पे, उनकी वाइफ पे, वो एक पॉलिटिकल चार्ज था जो कि कैंपेन में हुआ, उन्होंने उसका जवाब दिया. यहाँ पे पवन खेरा ने लगाया.
0: राहुल जी, ऐसा कृपा करके नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए राहुल जी. ऐसा आप लोग बहुत चीज़ को सिंप्लीफाई कर देते हैं. हिमंत बिश्व शर्मा हैज़ नॉट लेवल एनी एलिगेशन अगेंस्ट गौरव गोगोईज वाइफ. आई लेवल एलिगेशन सस्टेंशिएट बाई डॉक्यूमेंट्स. आई एक्सपोज द लिंक बिटवीन पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट एंड मिस्टर गौरव गोगोई. एंड इट वॉज ए जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन. एलिगेशन नहीं है ये अभी दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज है. एंड मिस्टर गौरव गोगोई हैज़ नॉट डिस्टोर्टेड और रिफ्यूटेड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. हमने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया नहीं हूँ. हमने कोई उनका गलत पासपोर्ट लेके आपका सामने नहीं आया हूँ. उनने जो पाकिस्तान किया है वो वीसा में कोई गलत वीसा लेके नहीं आया हूँ. सो देयर इज नो पैरेलल कि मैं उनका वाइफ का बारे में बोला इसलिए मेरा वाइफ का बारे में वो बोलेगा. ये बात इतना सिंपल नहीं है. मेरा वाइफ का खिलाफ इफ यू हैव ए डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए. आपके फोर्जरी किया क्या? मैंने तो कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज नहीं किया. हम तो आई एम ड्यूटी बाउंड कि अगर कोई व्यक्ति का पाकिस्तान से लिंक हो इन्वेस्टिगेशन करके भारत सरकार को बताना. ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
1: अच्छा, ये बताएं हेमंत दा कि हैट्रिक होने के बाद इस बार के आपके टर्म में आपकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज़ क्या हैं? क्योंकि पिछले टर्म में भी हमने देखा कि जिस तरीके से जीएसडीपी, जो स्टेट की ग्रोथ की विकास दर है, वो ज़्यादा थी. आसाम और तेज़ी से बढ़े, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड हो, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? क्या लोग आपसे एक्सपेक्ट करें?
0: देखिए, आसाम एक भारत के उभरते हुए इकोनॉमी है, एक साइनिंग स्पॉट है. और आसाम में बहुत तरक्की हो रहा है, बट इसकी स्पीड को एस्कालेट करना है. सरकार होने दीजिए, विल कम आउट विथ ए वेरी पॉजिटिव एजेंडा. और मुझे लगता है और 5 साल आसाम में यही पेस में काम होगा तो द आइडेंटिटी ऑफ आसाम विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट.
1: अब तो पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार है. पश्चिम बंगाल और आसाम का जब एक पैकेज डील हो जाता है नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि खासतौर से हमारी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है वो सिलीगुड़ी के पास कॉरिडोर है, तो उस पर आप और जो भी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बल्कि मिलके कैसे डबल धमाका कर सकते हैं?
0: देखिए, ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है. हमारा वल्नरेबिलिटी नेशनल सिक्योरिटी का पॉइंट से भारत और बांग्लादेश का सीमा 5 स्टेट शेयर करते हैं, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड पश्चिम बांग्ला, वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ द बॉर्डर. आज एनडीए सरकार होने का कारण ये सारू स्टेट में बॉर्डर फेंसिंग बने और बीएसएफ काफ़ी प्रभावी रूप से काम कर रहा है. लेकिन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश बॉर्डर आज भी खोले है. सरकार ने जमीन नहीं दिए, फेंसिंग नहीं हुए, तो हमारा यहाँ भी क्राइम करे, क्रिमिनल को खाली बंगाल जाना है, देन दे विल स्लिप अवे, स्लिप टू द बांग्लादेश. बांग्लादेश से कोई लोग आए, हम यहाँ से भगाया, फिर वहाँ से घुसेगा. तो दैट वाज ए वेरी वेरी क्रिटिकल गैप्स जो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का बीच में रहा है. ये इसका कारण हमारा जो काउ स्मगलिंग, काउंटरफेक, फिर उनका साथ साथ में द क्रिमिनल्स का जो मूवमेंट रहा, ये एक बहुत वल्नरेबल पॉइंट्स बन रहा था. तो ये विजय ने, दिस विन विल क्लोज दोस मिसिंग लिंक्स. साथ में जो सेकेंड नेक का वल्नरेबिलिटी है, उसमें भी हमें काम करने का मौका मिलेगा. सो मेरा लगता है इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द नेशन कि मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल एक कोहरेंटली काम करे टू सिक्योर आवर बॉर्डर विद बांग्लादेश. नाउ फाइनली इट हैज़ बिकम पॉसिबल. तो इसीलिए मैं कल भी बोल रहा था कि पश्चिम बांग्ला का विजय बीजेपी का नहीं है, पश्चिम बांग्ला का विजय भारत का है.

0: इंडिया हैज फाइनली ओन।
1: सर ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहती हैं कि 100 सीटें मुझसे लूटी गई, मैं हारी नहीं, ये छीनी गई मुझसे, चीटिंग हुई, वो कह रही मैं रिजाइन नहीं करूंगी।
0: देखिए रिजाइन नहीं करेगा तो उनको डिसमिस कर दिया जाएगा, तो उनका हिसाब से थोड़े देश चलेगा। तो एक समय तक राज्यपाल महोदय अपेक्षा करेगा, उसका बाद सी विल बी डिसमिस, एज सिंपल एज दैट। आपका रिजल्ट हो गया, चुनाव का परिणाम डिक्लेयर हो गया, आप बोला है मेरे से 100 सीट जीत छीन के लिया है, तो मैं भी बोलूँगा कांग्रेस ने जो 19 सीट जीता है वो भी मुझे छीन के लिए लिया गया है, मुझको तो 126 ही मिलना चाहिए था। थोड़े देश ऐसे चलता है। तो बहुत भारत जैसा देश है इसलिए एक सीएम को इतना दिन लोगों ने सह लिया। आपका बॉर्डर में आप फेंसिंग करने नहीं देते हो और आप बोलते हैं मेरे से छीन लिया गया। आपसे तो बहुत पहले से ही आपको ये रिजल्ट आपका पास होना चाहिए था। पश्चिम बंगाल का लोगों ने आपको बहुत दिए और आज आप उन्होंने बीजेपी को मैंडेट दिया, बोला है मैंने रिजाइन नहीं करूंगा, जैसे आपका रिजाइन करे ना करने का ऊपर समाज चलेगा।
1: नहीं, उनका चार्ज है कि इलेक्शन कमीशन का मिसयूज किया गया, एसआईआर के जरिए डिलीशन जैसे हुए ताकि टीएमसी के कैंडिडेट्स को और उनकी पार्टी को चोट पहुंचे, कि तंत्र एक तरीके से ईसी और बीजेपी ने मिल के चुनाव लड़ा, ये उनका
0: ये कहां गारंटी है? नहीं नहीं नहीं राहुल जी, एसआईआर होना, सुप्रीम कोर्ट हैज मैंडेटेड द एसआईआर। आपने सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड नो यू आर रॉन्ग, इलेक्शन कमीशन इज करेक्ट, देन वो डिबेट तो समाप्त हो चुका है। ये डिबेट कहाँ रहा? ये तो डिबेट सुप्रीम कोर्ट का फ्लोर में ही समाप्त हो चुके हैं। एसआईआर किया इसलिए मैंने हार गया। अरे एसआईआर में जिसका नाम काटे गए है सब नाम आपका खाता में दे दूं फिर भी आप जीत रहे क्या?
1: नहीं, गैप, गैप
0: ऐसे
1: बहुत
0: क्यों आप बोलते हैं?
1: आपके हिसाब से
0: गैप कैसे ज्यादा है?
1: नहीं नहीं, आपका वोट शेयर गैप बहुत ज्यादा है। अगर एसआईआर के सारे वोट्स भी जोड़ दो तब भी तृणमूल नहीं जीतती। इनफैक्ट हमारा आंकड़न तो यह है जो डेटा फाई की टीम ने किया,
0: तब भी तृणमूल नहीं जीतते हैं।
1: यस यस, आप सारे बाकी ऑपोजिशन लीडर्स को भी एक कर लो तब भी तृणमूल नहीं जीतती है। सारे ऑपोजिशन को भी जोड़ दो तब भी 163 सीटें आती हैं बीजेपी की।
0: आप देखिए, नहीं एसआईआर में मरे हुए लोगों का नाम काटे, एसआईआर ने दो जगह में जिसका नाम थे उसका नाम काटे, फाइनली 27 लाख 30 लाख जो भी जीवित लोगों का नाम एक अलग लिस्ट में चला गया है उसमें भी हिंदू एंड मुस्लिम है। और आपको आपका खाता में इफ वी गिव 90% वोट्स ऑल्सो 10 सीट का परिणाम चेंज हो सकेगा, उससे तो नहीं होगा चेंज। तो आपको लगता है कि स्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन मींस आपका खिलाफ है? ये तो देश थोड़े ऐसे चलते हैं। बहुत मैंने यही बोला हूं कि दीदी को ग्रेसफुली रिजल्ट एक्नॉलेज करना चाहिए। और जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ बंगाल पॉलिटिक्स, आप देखो 2021 में तृणमूल जीते, हजारों लोग आसाम तक भाग के आए, आज बीजेपी जीते, आज तो भरोसा आ गया, नोबडी इज फ्लीडिंग टू असम टुडे। तो चेंज तो दिखने ही लग गया तुरंत। कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मैं हर पॉलिटिकल पार्टी को अपील करता हूँ राजनीतिक हिंसा नहीं होना चाहिए। कोई हिंसा नहीं है आज वेस्ट बंगाल में, सिचुएशन हैज इम्प्रूव इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट। दीदी को तो आई थिंक सी शुड लुक बैक।
1: इस नतीजे से आपकी नेशनल पॉलिटिकल स्टैंडिंग भी बढ़ी है। आपके हिसाब से जो असेंबली इलेक्शन में रिजल्ट्स आए उसका जो नेक्स्ट सेट ऑफ असेंबली इलेक्शंस हैं, पंजाब में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, गोवा में हैं, मणिपुर में है, उन पर क्या इम्पैक्ट होगा? व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम दीज इलेक्शंस टू द नेक्स्ट सेट ऑफ इलेक्शंस? क्या मैसेज है?
0: आई थिंक बिहार इलेक्शन हैज इन्फ्लुएंस गैल्वनाइज द पार्टी वर्कर इन असम बंगाल, एंड रिजल्ट ऑफ असम बंगाल विल गैल्वनाइज पार्टी वर्कर ऑफ यूपी पंजाब उत्तराखंड। सो बीजेपी इज ए ऑलमोस्ट ए वॉर मशीन, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर इलेक्शन, वंस दैट इलेक्शन इम्पैक्ट अदर्स एंड आवर लीडरशिप इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड। सो मेरा लगता है कि आफ्टर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो भी हो रहा है it shows that Prime Minister Modi enjoyed the total confidence of the people of Assam, and this will continue.
1: इसके बाद अब मैं बाकी पार्टियों का दिखाना चाहता हूं हमारे डेटा फाइव डैशबोर्ड पे. AUDF पहले की तुलना में बहुत कमजोर हो गया है. AUDF कमजोर हो गया है, कांग्रेस का भी खुद का स्ट्राइक रेट काफी गिर गया है. ऐसे में आप ऑपोजिशन पॉलिटिक्स कैसे देखते हैं? AUDF को केवल दो सीटें आई, 6.7% उनका स्ट्राइक रेट है. कांग्रेस का 19.2, AGP हालांकि 10 सीटें मिली लेकिन अब AGP वो AGP नहीं रही जो पहले थी. तो ऐसे में आपका स्ट्राइक रेट तो 91.1% है, लेकिन आप ऑपोजिशन पॉलिटिक्स को कैसे देखते, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन तो हमेशा रहता ही है. यहाँ पे जो AUDF पहले था वो तो अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, वो सारा जो मुस्लिम वोट था वो कांग्रेस को चला गया.
0: अभी दैट ऑपोजिशन स्पेस विल बी ऑक्युपाइड बाय द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश. बेसिकली वी कॉल बांग्लादेशी मुस्लिम, ऑल्दो टेक्निकली दे मे बी ए इंडियन सिटीजन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. एंड देयर विल बी ए वैक्यूम इन द ऑपोजिशन सो फार एज असम इज कंसर्न, बट देयर विल बी we'll encourage our MLAs to take up the issues of the people, and our MLAs will raise those issues and we'll walk in a manner so that people doesn't feel the absence of opposition in the assembly.
1: Okay, I've lost that line for a moment with Hemantada. Hemantada, aapko awaaz aa rahi hai meri? I just want to show you a couple of more things while I get that line back with Hemanta Biswa Sarma. I want to show you a few more things. If you look at Upper Assam, which used to be the bastion of the Congress when Tarun Gogoi and even before that, now the Congress is reduced to just two seats, down 7 from the 21 elections. The BJP in Upper Assam occupying 33 seats, up 9. This is one of the big significant changes because essentially Hemantada, जो अपर आसाम की मैं बात कर रहा था, मैं दर्शकों को दिखा रहा था कि अपर आसाम में जो कि एक टाइम पे कांग्रेस का गढ़ होता था, वहाँ पे तो अब सैफरन ही सैफरन है. आपने तो केवल दो ही सीटें छोड़ी हैं अपर आसाम में कांग्रेस के लिए. कांग्रेस का वजूद केवल और केवल जो लोअर आसाम की डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर रह गया, धुबरी के इर्द गिर्द. और ऐसे में वो कहते कि डीलिमिटेशन उनके खिलाफ यूज़ हुआ कि डीलिमिटेशन से आपने सारी मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड सीट्स को एक तरफ कर दिया और बाकियों के लिए आपने अपना समीकरण बीजेपी के लिए आसान कर दिया. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस?
0: राहुल जी, अपर असम में तो मुस्लिम था ही नहीं, सो व्हाई दे लॉस्ट अपर असम? सो डीलिमिटेशन वॉज डन टू रेशनलाइज द सीट्स, उसके सिवा तो कुछ नहीं था. अगर डीलिमिटेशन का इफेक्ट होते थे तब अपर असम में भी उसको दिखाई देना चाहिए था, बिकॉज अपर असम में तो कोई मुस्लिम बहुल जगह था ही नहीं, वहाँ में भी डिलिमिटेशन हुआ, फिर भी तो कांग्रेस वहाँ में भी तो नहीं जीते.
1: अच्छा,
0: तो डिलिमिटेशन का साथ इफ यू लुक आपका टीम है डॉक्टर
1: जी, बोलिए,
0: आपका टीम देख सकता है कि बीजेपी एंड NDA हैज स्कोर्ड 49% ऑफ द पॉपुलर वोट, तो हमें सीट ही नहीं बढ़े, हमारा वोट भी बढ़े अब तो 50%.
1: मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूँ, ये जो बात कर रहे हैं हेमंतदा, डैशबोर्ड पे देखिए, ये है वोट्स का 48.6, 48.6% पिछली बार से 4.1% ज़्यादा. कांग्रेस के 36, उनके भी 4.5 बढ़े, लेकिन गैप बहुत बढ़ गया. AUDF 5.5% पे. जब मैं आता हूँ गुवाहाटी, मुझे हर बार एक चीज़ का एहसास होता है हेमंतदा, कि आप भाजपा तो चलाते ही हैं लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस का भी एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो कि आपसे टच में रहता है, आप ही उनको बता रहे होते हैं क्या करना है क्या करना है. हमने आपके साथ पावर प्ले किया था कैंपेन के दौरान, प्रद्युत बोरदोलई हमारे साथ से बातें कर रहे हैं, मैं जब तक मैं दिल्ली लौटा तब तक वो आपके पास आ गए थे. तो अब क्या सिचुएशन है, कांग्रेस हेमंता मुक्त हो गई है या अभी भी कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो हैं तो कांग्रेस में लेकिन बात आपकी सुन रहे हैं?
0: अभी जो 19 MLA जीते हैं इसमें से मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है.
1: कितना दोस्त है आपका
0: कांग्रेस का?
1: कितना कितना 19 में कितने आपके हैं?
0: से
1: छे
0: सिक्स सिक्स
1: एक सेकेंड. तो आप कह रहे हैं कि जब आप चाहें इन छह को आप अपनी तरफ खींच सकते हैं?
0: तो व्हेनेवर प्रेसिडेंट इलेक्शन विल टेक प्लेस यू विल सी दैट वी विल गेट 6 मोर वोट.
1: ये देखिए, कह रहे हैं कि 19 है, 19 में से छह इनके हैं. सर ये होता कैसे, ये तो आप ही करते हैं, ये उससे ना कोई OTT सीरियल के जो मतलब वो किरदार होते हैं मुझे वो समझ में आता है. मैं अपनी पार्टी भी चलाता हूँ, ऑपोजिशन भी मैं ही चलाता हूँ.
0: ने पूरा पूरा ये मैं 22 साल कांग्रेस में रहा, सो आई कीप ऑन दैट लाइव लिंक।

0: ओपन, ये सब कांग्रेस में मतलब मैं ही ये लोगों को आगे किया था, मेरा ही मतलब उनका पॉलिटिकल ग्रोथ में आई प्लेड सम रोल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, या दे हैव हेल्प मी, आई हेल्प देम, वी ग्रो टुगेदर. सो देयर इज मेनी इक्वेशन, इट इज़ अ स्मॉल स्टेट, सो वी नो इट्स अदर. सो ये बहुत बड़ा अंक नहीं है, और असम में भी सारे लोग जानते हैं कि ये हिमंत का साथी है.
1: नहीं नहीं, अगर गौरव गोगोई या राहुल गांधी की टीम देखेगी एनडीटीवी का इंटरव्यू, वो कहेंगे कि हिमंता दा माइंड गेम्स खेल रहे हैं, साइकोलॉजिकली साइओप्स कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, डराने की कोशिश कर रहे हैं कि 19 तो जीते, उनमें भी 6 आपके हैं, आप कह रहे हैं
0: माइंड गेम्स. तो आपने देखा ही है, यू हैव सीन भूपेन बड़ा, यू हैव सीन प्रदुत बोर्डलोई, सो दिस इज नो लॉन्ग, आई डोंट थिंक दे विल सी इट इज अ माइंड गेम्स. बिकॉज मैं तो आपको बोल भी दिया हूँ कि राष्ट्रपति का चुनाव में से वोट हमको और ज्यादा मिल जाएगा.
1: बाप रे, बड़े खतरनाक हैं. अच्छा, मैं एक दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, एक बार मैं इनके पास गया था तो मिल रहे थे, पूरा समझा रहे थे कि क्या करना है कैसा करना. मैंने पूछा ये है कौन जो दो लोग आए हुए हैं, बाद में हिमंता दा कहते ही AUDF के कैंडिडेट हैं. अब ये जो दो AUDF वाले आए हैं वो एक्चुअली AUDF के या वो भी आप ही के ही हैं?
0: AUDF में वही है, दो ही विधायक है, एक तो अजमल साहब खुद है और एक है. ठीक है, सबका साथ एट माई पर्सनल लेवल मेरा सबका साथ ठीक होता है. मैं बहुत पॉलिटिकल एनिमिटी को कल्टीवेट नहीं करता हूँ. मेरा हमेशा अप्रोच होता है कि सबको दोस्त बना के रखो.
1: अच्छा, एक आखिरी सवाल. अब तो एक तरीके से वेस्ट बंगाल से भी, क्योंकि पहले आसाम एक तरीके से गेटवे बन गया था नॉर्थ ईस्ट के लिए, वहाँ पे आ रहा था. अब चूंकि बंगाल में कॉम्पिटिशन है, तो आपको लगता है अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन भी होगा बंगाल से?
0: नहीं, बंगाल विनिंग इज़ ए वेरी गुड न्यूज़ फॉर असम. अभी जैसे असम से जो भी हमें करना है, इवन एक ऑप्टिकल फाइबर भी बैठाना है, केबल भी लाना है, इट विल ऑलवेज कम थ्रू बंगाल. एंड बंगाल हमें राइट टू एक्सेस नहीं देते थे, हमारे जो सामान आते थे वो भी बंगाल से आते थे, हमको बहुत दिक्कत होते थे. सो गवर्नमेंट इन बंगाल विल एक्सेलरेटेड द पेस ऑफ डेवलपमेंट इन असम.
1: और बंगाल का मैं बड़ा क्यूरियस हूँ जानने के लिए, जिस तरीके से तमिलनाडु में विजय जीते, उसको आप कैसे देखते हैं? एकदम एक तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी में जेनजी मोमेंट हो गया कि दोनों द्रविडियन पार्टियों की लड़ाई थी, बीजेपी ADM के साथ था और जीता एक सिनेमा का सुपरस्टार, और इंडिया का जेनजी मोमेंट, उस पर आप कैसे देखते हैं?
0: मेरा थोड़ा व्यू अलग है. आई थिंक तमिलनाडु हैज ऑलवेज वोट फॉर द पीपल हु आर सुपरस्टार इन द स्क्रीन. आई थिंक दैट्स द ट्रेडिशन यू हैव सीन सिंस लॉन्ग. जयललिता, करुणानिधि, यू हैव सीन इट, MGR. आई थिंक दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट लिगेसी. तमिलनाडु पॉलिटिक्स इज ऑलवेज डोमिनेटेड बाय सुपरस्टार इन द स्क्रीन. आई थिंक मोर देन जेनजी, आई थिंक इट इज अ रिन्यूअल ऑफ MGR मोमेंट.
1: आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु में सुपरस्टार कल्चर है. मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कैंपेन और कैंपेन के बाद की वो तस्वीरें.
0: ऐसे में बहुत वो सब में मैं नहीं बोलता हूँ. मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि तमिलनाडु पॉलिटिक्स में स्किन का लोग सुपरस्टार हमेशा इन्फ्लुएंस करते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिशियन है जो फिल्म से ही पॉलिटिक्स में आते हैं. एंड MGR मोमेंट में मेरा मानना है कि दिस इज अ सेकेंड MGR मोमेंट इन तमिलनाडु. एक सुपरस्टार ने बहुत डोमिनेट किया था, नेक्स्ट सुपरस्टार हैज अराइव्ड.
1: मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ, अगर तमिलनाडु के वोटर्स सुपरस्टार से प्रभावित हैं, तो आसाम के वोटर्स एक पॉलिटिकल सुपरस्टार से प्रभावित हैं. स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक नेता है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं. ये अपना अलग तरह का सुपरस्टारडम है, पॉलिटिकल सुपरस्टारडम.
0: अगर रजनीकांत जी कभी तमिलनाडु में चुनाव लड़ते थे, आई थिंक ही वुड हैव आल्सो स्वीप्ड द इलेक्शन. दैट इज माय ऑब्जर्वेशन, आई मे नॉट बी करेक्ट.
1: नहीं, आप देख नहीं पा, आप शायद देख नहीं पा रहे. मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी स्क्रीन पे वो तस्वीरें चला रहा हूँ जिसमें आसाम का पॉलिटिकल सुपरस्टार गा रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है. जब इस तरह का सुपरस्टार हो तो रजनीकांत के लिए या MGR के लिए या विजय के लिए फिर जगह कहाँ

0: आप ही सब कर रहे हैं, ऑल इन वन पैकेज है। ऑपोजिशन भी चला रहे, सरकार भी चला रहे, गाना भी गा रहे, डांस भी कर रहे, नाच भी रहे, बताइए सभी कुछ तो आप ही कर रहे हैं।
1: चलिए एक आप एक आसाम थोड़ा सा हटके कर रहे हैं। यहाँ में स्क्रीन का सुपरस्टार का जगह में हम लोग पॉलिटिशियन ही नाच रहा हूँ गा रहा हूँ। कम से कम वी आर नॉट अलाउ वैक्यूम टू बी एग्जिस्टेड।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, वी विश यू ऑल द बेस्ट। हिमंत बिस्वा सरमा, आपने वक्त निकाला, आपने आगे का असम का एजेंडा क्या रहेगा उस पर बात की, हमारे साथ आप जुड़े एनडीटीवी पे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।

0: for you. And the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
1: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
2: I think that Shiv was not the only incident.
3: Tobi Puran Khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসি তবে একলা চলো রে
4: মিঠা या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
1: The results with the BJP winning more than 200 seats clearly answer those questions. Our teams on the ground, in the studios, in the newsroom, we keep tracking every twist. We try to stay away from the noise, try to use the election analytics to bring the coverage together for you. 90% voting is not common. That's 140 elections with less than 70%. Tuvendu Adhikari leading at this moment. 5 states, 824 assembly seats. An election that felt more like a war.
5: Again, going to shift focus to West Bengal, bring in our colleagues from the ground as well.
1: We've got some breaking news just coming in.
0: Kanchan Gupta to wear this morning. Green was not one of them. Kanchan, what's going on here?
5: Khela ho be.
6: Vijay is finishing off every existing political force.
0: This holds, Pradeep Gupta will be dancing. Joining us now, live and exclusive on NDTV, the architect of this historic victory.
7: Janta ko badhai de raha hu.
0: To all our viewers who've joined us in this long day, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
8: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात
9: वाओ मामा क्या स्वाद है
10: अरे मेरे राजा
11: सबका राजा आर्योर मसाला
12: भरोसा ऑन मोदी जी An extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
13: Illegal migrant. ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है. देश की जनता के लिए नहीं. इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार.
14: भय से भरोसा is the transition which is happening now. भय से मुक्ति is the victory. Being depicted.
5: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है तो रसगुल्ला किसका है ओडिशा का या बंगाल का
15: ओडिशा का है महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है रसगुल्ला दोनों की
16: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री
17: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट
18: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
0: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला
7: इसमें जनता का जीत है मोदी जी का जीत है
9: आज के की खावें झालमुड़ी ना माचेर झोल
0: हाउ विल यू सेलिब्रेट
7: झालमुड़ी माचेर झोल विद रसगुल्ला
19: यू नो यू रिमेंबर यू प्रॉमिस मी दैट यू विल कम टू कबिनी एंड डू एन इंटरव्यू विद मी यू लाइक गोइंग टू द फॉरेस्ट
20: दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ आवर स्टेट दैट टू द एंटायर कंट्री दैट आवर केरला इज सेक्युलर
21: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की
0: वन क्लिप दैट वेंट मोस्ट वायरल was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
1: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
2: I think that Shiv was not the only incident.
3: Tobi Puran Khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসি তবে একলা চলো রে

0: India's leading producer of stainless steel.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
4: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
5: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
6: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
7: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
8: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
9: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक the confidence of industry.
10: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
11: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
12: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
13: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
14: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
15: आज के की खावें झालमुड़ी ना माचेर झोल।
13: How will you celebrate?
14: झालमुड़ी माचेर झोल विद रसगुल्ला।
16: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
17: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
18: ये विजय बंगाल की जनता के, विशेष करके मातृशक्ति की।
13: One clip that went most viral was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
19: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
20: I think that Shiv was not the only incident.
21: Tobe poran khule toy mukh phute tor moner kotha ekla bolo re jodi tor dag shune.

0: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: भरोसा ऑन मोदी जी एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल वी आर विथ यू।
2: इलीगल माइग्रेंट ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
3: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
4: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
5: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
6: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
7: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट।
8: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
0: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
9: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
10: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
11: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचे झोल।
9: How will you celebrate?
12: झालमुड़ी माचे झोल विद रसगुल्ला।
13: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
14: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
15: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
9: One clip that went most viral was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
16: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
17: I think that was not the only incident.
18: Tobi Puran Khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
0: মিঠা ইয়া নমকিন চাহে জেসে খাও 100% সুজি সে বনি আর পিওর ভার্মিসলি স্বাদিষ্ট সেহতমন্দ হর রোজ।
1: ভরসা অন মোদি জি এন এক্সট্রাঅর্ডিনারি ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাশোরেন্স অফ কারেজ given by Amit Shah ji to all the people, we are with you.
2: Illegal migrant, ye Bangladeshi ghuspatiya ke liye ye dono party pratibadh hai, desh ki janta ke liye nahi, isliye desh ke janta ne usko nakar.
3: Bhay se bharosa.
4: Welcome back. News coming in from Tamil Nadu, where the Congress claims that Vijay has reached out to them for support. KC Venugopal says that the mandate is a secular government and that Vijay requested for support for government formation. A decision has now been left to the Congress's state unit. So big talks already underway. Will it ultimately be a Congress Vijay Sarkar? Stay tuned to NDTV for more on that. Thanks for watching.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, जिंदल साथी सील साथी रे।

0: India's leading producer of stainless steel.
1: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
2: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
3: आज के की खावें झालमुड़ी ना माचेर झोल।
1: How will you celebrate?
2: झालमुड़ी माचेर झोल with रसगुल्ला।
4: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the

0: got the poll right, which is quite fantastic.
1: We saw you campaigning, ma'am.
0: Historic victory.
2: Janta ko badhai de raha hu.
0: To all our viewers who've joined us in this long day, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा
5: का राजा आकर मसाला।
6: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल। वी आर विथ यू।
7: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
8: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ। भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
9: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
10: ओडिशा का है। रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
2: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक the confidence of industry.
11: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
12: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
13: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: The results with the BJP winning more than 200 seats clearly...
9: इस वक्त हमारे साथ एनडीटीवी नेटवर्क पर मौजूद हैं गुवाहाटी से लाइव और एक्सक्लूसिव आसाम के राजनीतिक बादशाह, हैट्रिक दर्ज करने वाले और हैट्रिक के दौरान सेंचुरी मारने वाले हेमंत बिश्व शर्मा इस वक्त हमारे साथ एनडीटीवी पर मौजूद हैं। दो मैप आपके स्क्रीन पर हैं, ये 2021 का आसाम का पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पे लोअर आसाम रीजन में फिर भी कांग्रेस काफ़ी हद तक दिख रही है, और ये है 2026 का राजनीतिक मैप, जहाँ जो बची कुची सीटें थी कांग्रेस की वो भी पहले की तुलना में, पहले ही 30 थी, अब और भी घट के 21 हो गई। हेमंत बिश्व शर्मा सेंचुरी, वो भी हैट्रिक के साथ, लोगों को लग तमिलनाडु में क्या होगा इस पे अनिश्चितता थी, पश्चिम बंगाल को लेके सस्पेंस था, केरल में कितनी टाइट फाइट होगी, अगर लोग कन्विंस थे कि कहीं पे एक वर्डिक्ट काफ़ी क्लियर है वो आसाम का, लेकिन आपको लग रहा था कि सेंचुरी, इतनी बड़ी जीत आपकी दर्ज होगी, 73 से 102 पार, स्वागत है और मुबारकबाद।
1: फॉर आस इट वॉज एक्सपेक्टेड प्राइमरीली बिकॉज इन 2024 लोकसभा इलेक्शन we registered victory in 94 assembly seats. So we were around 100 number right from the 2024 Lok Sabha election. So we further consolidated and crossed 100 and we reached 102. So in Assam, it was not a major prize. It was overall less expected that we will be somewhere around 95 to 100.
9: मेरे पास 2024 के लोकसभा के भी आंकड़े हैं, ये देखिए मैप, उसमें 88 थी बीजेपी की, अब हो गई हैं 102, तो काफ़ी हद तक जो सैफरन स्वीप थी आसाम में वो और भी बढ़ गई है। जब हैट्रिक के साथ आता है, साधारण तौर पे हैट्रिक के वक्त पे एक एंटी इनकम्बेंसी सी बिल्ड हो जाती है, लेकिन आपने तो एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को धो डाला, कांग्रेस को धो डाला, यहाँ तक कि गौरव गोगोई भी हार गए। जोरहाट में मेरे को याद है आपसे मुलाकात हुई थी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले, आपने बोला था राहुल मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, तुम्हें मुझसे नोट करा लो, इसको मैं हरा दूंगा, कुछ भी हो जाए, गौरव गोगोई जोरहाट में नहीं, तब तो जीत गए, इस बार आपने हरा दिया, क्या किया आपने इस बार जो पिछली बार नहीं हो पाया?
1: आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज नॉट टेस्टेड, बट इन लास्ट वन ईयर पीपल ऑफ जोरहाट कुड सी हिम फ्रॉम अ वेरी क्लोज क्वार्टर। And important point to note that he not only lost his own seat, he lost 9 out of 10 in the entire Lok Sabha constituencies. Today, in his constituency, there is only one MLA, that too from an alliance party. Congress has now no MLA from the entire Jorhat Lok Sabha constituency. So it was not a defeat, it was a complete defeat in that sense of term.
9: अच्छा हेमंत दा, इस वक्त आप एनडीटीवी के सारे चैनलों पे लाइव हो, आप एनडीटीवी इंडिया पे भी लाइव हो, इसलिए मैं आपसे हिंदी में सवाल कर रहा हूँ, और मेरा अनुरोध है कि आप हिंदी में जवाब दें ताकि हम सब जगह आपको अच्छे से दर्शकों को दिखा भी पाएं। पहले जिस तरह की डोमिनेंस आपकी आसाम में हो गई है, वैसे बहुत ही कम प्रेसिडेंट्स हैं बीजेपी में और इस वक्त की राजनीति में जो कि अपने राज्य को और अपने पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करता है। जब आप अपने प्रोग्रेशन को देखते हैं, आपके हिसाब से असम की जनता ने इस मैंडेट के जरिए हिमंत बिस्वा सरमा के राजनीतिक भविष्य के बारे में क्या मैसेज दिया है?
1: मेरा नहीं लगता है कि आपको असम का रिजल्ट कोई व्यक्ति का भविष्य का साथ जोड़ना चाहिए। असम इज ए वेरी स्पेशियल केस। राहुल, मैं आपको भी जब भी मिलता हूँ हमेशा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। असम का लोग एक बहुत बड़ा समस्या में है। हम लोग अपना आइडेंटिटी को लेके हमारा भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित रहता हूँ, बिकॉज वी आर नाउ लूजिंग द डेमोग्राफिक बैटल बहुत फास्ट। टुडे असम विल हैव 40% मुस्लिम पॉपुलेशन इन दिस सेंसस, रफली अराउंड 40%। 12 से 13 जिला में हम लोग वी हैव बिकम कंप्लीट माइनॉरिटी। सो हर चुनाव असम का लोग अपना अस्तित्व का साथ जोड़ते हैं और हमारे आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग वोट डालते हैं। सो चुनाव जीतने और हारने ये दोनों का साथ एक बहुत बड़ा बातें छुपा होते हैं कि क्या असम फाइनली इट विल बिकम ए मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। तो हमारे शंका हमारे चिंता देश का प्रदेशों से काफ़ी अलग है। सो दिस इज नॉट ए विक्टोरी प्रोबेबली। ये हमारे जो जूट चलता है असम का अंदर, इसका और एक चैप्टर है।
9: हिमंतदा, जहां एक तरफ आप अपने आप को एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे साबित कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स टाइप की इंडस्ट्रीज आप असम में लेके आ रहे हैं जिसके लिए आपकी तारीफ भी हो रही है, आप पे कैंपेन के दौरान आरोप लगा हेट स्पीचेस का कि बहुत ही कॉम्युनली डिवाइसिव आपने भाषण दिए। अब जब आप उस पर लुक बैक करते हैं तो आपको लगता है कि क्या वो गलती थी, कि आपको लगता है कि चुनाव की हीट और डस्ट में इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के आप प्राइवेटली रहते हैं या जो आप गवर्नेंस में कर रहे हैं, कैंपेन के दौरान जो हुआ, जो चार्जेस लगे, उस पर आपका क्या कहना है?
1: आप पहला बार मुझको लगता है आपने असम चुनाव बहुत क्लोजली फॉलो इस बार नहीं कर सका, बिकॉज बंगाल वाज डेफिनेटली ए इम्पोर्टेंट इलेक्शन। असम में कोई हेड स्पीच नहीं हुए, हमारा चुनाव नाचते हुए गाते हुए, वी एन्जॉयड द इलेक्शन लाइक ए फेस्टिवल। एंड इलेक्शन में कोई एलिगेशन काउंटर एलिगेशन नहीं था, इट वॉज ए कम्प्लीट वी ऑब्जर्व द इलेक्शन, वी एन्जॉयड द इलेक्शन एज ए फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ में कोई हेड स्पेस नहीं था, किसी का ऊपर आरोप भी नहीं थे, कोई झमेला, कोई नथिंग। इट वॉज सिंपली हम लोग चुनाव मंच में जाते हैं, गाना गाता हूँ, डांस करता हूँ, लोग भी साथ में डांस करते हैं और सभा समाप्त हो जाते हैं। कोई मामले ही नहीं हुआ इस बार इस दौरान। और बाकी आप जो हेड स्पीच मानते हैं, मैं मेरा स्पीच हमेशा सोच के देता हूँ और मैं जो भी बोलता हूँ वहाँ से बैकट्रैक करने का कोई सवाल ही नहीं है। व्हाट एवर आई डिलीवर स्पीच आई स्टैंड बाई इट एंड आई ओ इट कम्प्लीटली।
9: नहीं, अभी जैसे वो पूरा कांग्रेस के जो चीफ स्पोक्सपर्सन है पवन खेरा का मामला है, उनको एंटिसिपेटरी बेल तो मिली, अब ये क्या वो चुनाव का मामला था या उस केस को आप आगे भी लेके जा रहे हैं? मैं कल उनसे बात करा था, उनका तो हुलिया ही पूरा चेंज हो गया था, वो इतने स्ट्रेस में थे, आपने आसाम पुलिस उनके पीछे लगा दी।
1: नहीं, आसाम पुलिस अभी भी उनका पीछे में लगा हुआ है। आई थिंक ही विल बी सर्व नोटिस टू अपीयर बिफोर पुलिस स्टेशन, बिकॉज हाई कोर्ट ने उनका कोई केस खारिज नहीं किया है। थोड़ा अभिषेक मनु सिंह भी ने थोड़ा लोगों को डिस्टोर्ट करने का कोशिश किया, ही हैज जस्ट गॉट ए एंटिसिपेटरी बेल बट ही वॉज आस्क्ड टू ज्वाइन इन द इन्वेस्टिगेशन। सो वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा, फिर देखा जाएगा कैसे केस आगे बढ़े। बट दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट केस, दिस इज ए केस टू सेव आवर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। बिकॉज आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी गृह मंत्री जी का एक स्पीच यही लोगों ने डिस्टोर्ट किए थे। इस बार भी फेक डॉक्यूमेंट से इलेक्टोरल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास हुए, मतलब दिस डिस्टोर्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोर्स डॉक्यूमेंट्स नाउ बिकम ए पार्ट ऑफ कांग्रेस टूल किट। हमें देखना है वेदर इट इज ए पवन खेरा और उसका पीछे कौन है, बिकॉज मैं नहीं मानता हूँ कि ये कागज़ लेके पवन खेरा ने खाली एक राज्यसभा सीटों के लिए एक मिस एडवेंचर किया. दिस मस्ट बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी. तो हमें ये केस का गहराई में जाना है.
9: नहीं, एक सवाल और इससे, जैसे आपने कुछ चार्जेस लगाए गौरव गोगोई पे, उनकी वाइफ पे, वो एक पॉलिटिकल चार्ज था जो कि कैंपेन में हुआ, उन्होंने उसका जवाब दिया. यहाँ पे पवन खेरा ने लगाया.
1: राहुल जी, ऐसा कृपा करके नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए राहुल जी. ऐसा आप लोग बहुत चीज को सिंप्लीफाई कर देते हैं. हिमंत बिश्व शर्मा हैज नॉट लेवल एनी एलिगेशन अगेंस्ट गौरव गोगोई वाइफ. आई लेवल एलिगेशन सस्टेंशिएट बाई डॉक्यूमेंट्स. आई एक्सपोज द लिंक बिटवीन पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट एंड मिस्टर गौरव गोगोई. एंड इट वॉज ए जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन. एलिगेशन नहीं है ये अभी दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज है. एंड मिस्टर गौरव गोगोई हैज नॉट डिस्टोर्टेड और रिफ्यूटेड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. हमने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया नहीं हूं. हमने कोई उनका गलत पासपोर्ट लेके आपका सामने नहीं आया हूं. उनने जो पाकिस्तान किया है वो वीसा में कोई गलत वीसा लेके नहीं आया हूं. सो देयर इज नो पैरेलल कि मैं उनका वाइफ का बारे में बोला इसलिए मेरा वाइफ का बारे में वो बोलेगा. ये बात इतना सिंपल नहीं है. मेरा वाइफ का खिलाफ इफ यू हैव ए डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए. आपके फोर्जरी किया क्या? मैंने तो कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज नहीं किया. हम तो आई एम ड्यूटी बाउंड कि अगर कोई व्यक्ति का पाकिस्तान से लिंक हो, इन्वेस्टिगेशन करके भारत सरकार को बताना, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
9: अच्छा, ये बताएं हेमंत दा कि हैट्रिक होने के बाद इस बार के आपके टर्म में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या हैं? क्योंकि पिछले टर्म में भी हमने देखा कि जिस तरीके से जीएसडीपी, जो स्टेट की ग्रोथ की विकास दर है, वो ज़्यादा थी. आसाम और तेजी से बढ़े नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड हो, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? क्या लोग आपसे एक्सपेक्ट करें?
1: देखिए, आसाम एक भारत के उभरते हुए इकोनॉमी है, एक साइनिंग स्पॉट है. और आसाम में बहुत तरक्की हो रहा है, बट इसकी स्पीड को एस्कालेट करना है. सरकार होने दीजिए, विल कम आउट विथ ए वेरी पॉजिटिव एजेंडा. और मुझे लगता है और 5 साल आसाम में यही पेस में काम होगा तो द आइडेंटिटी ऑफ आसाम विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट.
9: अब तो पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार है. पश्चिम बंगाल और आसाम का जब एक पैकेज डील हो जाता है नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि खासतौर से हमारी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है वो सिलीगुड़ी के पास कॉरिडोर है, तो उस पर आप और जो भी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बल्कि मिलके कैसे डबल धमाका कर सकते हैं?
1: देखिए, ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है. हमारा वल्नरेबिलिटी नेशनल सिक्योरिटी का पॉइंट से भारत और बांग्लादेश का सीमा 5 स्टेट शेयर करते हैं, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड पश्चिम बांग्ला, वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ द बॉर्डर. आज एनडीए सरकार होने का कारण ये सारू स्टेट में बॉर्डर फेंसिंग बने और बीएसएफ काफ़ी प्रभावी रूप से काम कर रहा है. लेकिन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश बॉर्डर आज भी खोले है. सरकार ने जमीन नहीं दिए, फेंसिंग नहीं हुए, तो हमारा यहाँ भी क्राइम करे, क्रिमिनल को खाली बंगाल जाना है, देन दे विल स्लिप अवे, स्लिप टू द बांग्लादेश. बांग्लादेश से कोई लोग आए, हम यहाँ से भगाया, फिर वहाँ से घुसेगा. तो दैट वाज ए वेरी वेरी क्रिटिकल गैप्स जो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का बीच में रहा है. ये इसका कारण हमारा जो काउ स्मगलिंग, काउंटरफेक, फिर उनका साथ साथ में द क्रिमिनल्स का जो मूवमेंट रहा, ये एक बहुत वल्नरेबल पॉइंट्स बन रहा था. तो ये विजय ने, दिस विन विल क्लोज दोस मिसिंग लिंक्स. साथ में जो सेकेंड नेक का वल्नरेबिलिटी है, उसमें भी हमें काम करने का मौका मिलेगा. सो मेरा लगता है इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द नेशन कि मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल एक कोहरेंटली काम करे टू सिक्योर आवर बॉर्डर विद बांग्लादेश. नाउ फाइनली इट हैज़ बिकम पॉसिबल. तो इसीलिए मैं कल भी बोल रहा था कि पश्चिम बांग्ला का विजय बीजेपी का नहीं है, पश्चिम बांग्ला का विजय भारत का है, इंडिया हैज फाइनली ओन।
9: सर ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहती हैं कि 100 सीटें मुझसे लूटी गई, मैं हारी नहीं, ये छीनी गई मुझसे, चीटिंग हुई, वो कह रही मैं रिजाइन नहीं करूंगी।
1: देखिए रिजाइन नहीं करेगा तो उनको डिसमिस कर दिया जाएगा, तो उनका हिसाब से थोड़े देश चलेगा। तो एक समय तक राज्यपाल महोदय अपेक्षा करेगा, उसका बाद सी विल बी डिसमिस, एज सिंपल एज दैट। आपका रिजल्ट हो गया, चुनाव का परिणाम डिक्लेयर हो गया, आप बोला है मेरे से 100 सीट जीत छीन के लिया है, तो मैं भी बोलूँगा कांग्रेस ने जो 19 सीट जीता है वो भी मुझे छीन के लिए लिया गया है, मुझको तो 126 ही मिलना चाहिए था। थोड़े देश ऐसे चलता है, तो बहुत भारत जैसा देश है इसलिए एक सीएम को इतना दिन लोगों ने सह लिया। आपका बॉर्डर में आप फेंसिंग करने नहीं देते हो और आप बोलते हैं मेरे से छीन लिया गया, आपसे तो बहुत पहले से ही आपको ये रिजल्ट आपका पास होना चाहिए था। पश्चिम बंगाल का लोगों ने आपको बहुत दिए और आज आप उन्होंने बीजेपी को मैंडेट दिया, बोला है मैंने रिजाइन नहीं करूंगा, जैसे आपका रिजाइन करे ना करने का ऊपर समाज चलेगा।
9: नहीं, उनका चार्ज है कि इलेक्शन कमीशन का मिसयूज किया गया, एसआईआर के जरिए डिलीशन ऐसे हुए ताकि टीएमसी के कैंडिडेट्स को और उनकी पार्टी को चोट पहुंचे, कि तंत्र एक तरीके से ईसी और बीजेपी ने मिल के चुनाव लड़ा, ये उनका
1: ये कहां गारंटी है? नहीं नहीं नहीं राहुल जी, एसआईआर होना, सुप्रीम कोर्ट हैज मैंडेटेड द एसआईआर। आपने सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड नो यू आर रॉन्ग, इलेक्शन कमीशन इज करेक्ट, देन वो डिबेट तो समाप्त हो चुका है। ये डिबेट कहाँ रहा? ये तो डिबेट सुप्रीम कोर्ट का फ्लोर में ही समाप्त हो चुके हैं। एसआईआर किया इसलिए मैंने हार गया। अरे एसआईआर में जिसका नाम काटे गए है सब नाम आपका खाता में दे दो फिर भी आप जीत रहे हैं क्या?
9: नहीं, गैप, गैप
1: ऐसे क्यों आप बोलते हैं?
9: आपके हिसाब से
1: गैप कैसे ज्यादा है?
9: नहीं नहीं, आपका वोट शेयर गैप बहुत ज्यादा है। अगर एसआईआर के सारे वोट्स भी जोड़ दो तब भी तृणमूल नहीं जीतती। इनफैक्ट हमारा आंकड़न तो यह है जो डेटा फाई की टीम ने किया,
1: तब भी तृणमूल नहीं जीतते हैं।
9: यस यस, आप सारे बाकी ऑपोजिशन लीडर्स को भी एक कर लो तब भी तृणमूल नहीं जीतती है, सारे ऑपोजिशन को भी जोड़ दो तब भी 163 सीटें आती हैं बीजेपी की।
1: आप देखिए, नहीं एसआईआर में मरे हुए लोगों का नाम काटे, एसआईआर ने दो जगह में जिसका नाम थे उसका नाम काटे, फाइनली 27 लाख 30 लाख जो भी जीवित लोगों का नाम एक अलग लिस्ट में चला गया है उसमें भी हिंदू एंड मुस्लिम है। और आपको आपका खाता में इफ वी गिव 90% वोट्स ऑल्सो 10 सीट का परिणाम चेंज हो सकेगा, उससे तो नहीं होगा चेंज। तो आपको लगता है कि स्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन मींस आपका खिलाफ है, ये तो देश थोड़े ऐसे चलते हैं। बहुत मैंने यही बोला हूं कि दीदी को ग्रेसफुली रिजल्ट एक्नॉलेज करना चाहिए। और जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ बंगाल पॉलिटिक्स, आप देखो 2021 में तृणमूल जीते, हजारों लोग असम तक भाग के आए, आज बीजेपी जीते, आज तो भरोसा आ गया, नोबडी इज फ्लीडिंग टू असम टुडे। तो चेंज तो दिखने ही लग गया तुरंत। कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मैं हर पॉलिटिकल पार्टी को अपील करता हूँ राजनीतिक हिंसा नहीं होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं है आज वेस्ट बंगाल में, सिचुएशन हैज इम्प्रूव इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट। डीडी को तो आई थिंक सी शुड लुक बैक।
9: इस नतीजे से आपकी नेशनल पॉलिटिकल स्टैंडिंग भी बढ़ी है। आपके हिसाब से जो असेंबली इलेक्शन में रिजल्ट्स आए उसका जो नेक्स्ट सेट ऑफ असेंबली इलेक्शंस हैं, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, गोवा में है, मणिपुर में है, उन पर क्या इम्पैक्ट होगा? व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम दीज इलेक्शंस टू द नेक्स्ट सेट ऑफ इलेक्शंस, क्या मैसेज है?
1: आई थिंक बिहार इलेक्शन हैज इन्फ्लुएंस गैल्वेनाइज द पार्टी वर्कर इन असम बंगाल, एंड रिजल्ट ऑफ असम बंगाल विल गैल्वेनाइज पार्टी वर्कर ऑफ यूपी पंजाब उत्तराखंड। सो बीजेपी इज ए ऑलमोस्ट ए वॉर मशीन, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर इलेक्शन, वंस दैट इलेक्शन इम्पैक्ट अदर्स एंड आवर लीडरशिप इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड। सो मेरा लगता है कि after the parliamentary election, jo bhi ho raha hai, it shows that Prime Minister Modi enjoyed the total confidence of the people of Assam, and this will continue.
9: इसके बाद अब मैं बाकी पार्टियों का दिखाना चाहता हूं हमारे डेटा फाइव डैशबोर्ड पे. AUDF पहले की तुलना में बहुत कमजोर हो गया है. AUDF कमजोर हो गया है, कांग्रेस का भी खुद का स्ट्राइक रेट काफी गिर गया है. ऐसे में आप ऑपोजिशन पॉलिटिक्स कैसे देखते हैं? AUDF को केवल दो सीटें आई, 6.7% उनका स्ट्राइक रेट है. कांग्रेस का 19.2, AGP हालांकि 10 सीटें मिली लेकिन अब AGP वो AGP नहीं रही जो पहले थी. तो ऐसे में आपका स्ट्राइक रेट तो 91.1% है, लेकिन आप ऑपोजिशन पॉलिटिक्स को कैसे देखते, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन तो हमेशा रहता ही है. यहाँ पे जो AUDF पहले था वो तो अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, वो सारा जो मुस्लिम वोट था वो कांग्रेस को चला गया.
1: अभी दैट ऑपोजिशन स्पेस विल बी ऑक्युपाइड बाय द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश. बेसिकली वी कॉल बांग्लादेशी मुस्लिम, ऑल्दो टेक्निकली दे मे बी अ इंडियन सिटीजन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. एंड देयर विल बी ए वैक्यूम इन द ऑपोजिशन सो फार एज असम इज कंसर्न, बट देयर विल बी we'll encourage our MLAs to take up the issues of the people, and our MLAs will raise those issues and we'll walk in a manner so that people doesn't feel the absence of opposition in the assembly.
9: अपर आसाम में जो कि एक टाइम पे कांग्रेस का गढ़ होता था, वहाँ पे तो अब सैफरन ही सैफरन है. आपने तो केवल दो ही सीटें छोड़ी हैं अपर आसाम में कांग्रेस के लिए. कांग्रेस का वजूद केवल और केवल जो लोअर आसाम की डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर रह गया, धुबरी के इर्द गिर्द. और ऐसे में वो कहते कि डीलिमिटेशन उनके खिलाफ यूज हुआ, कि डीलिमिटेशन से आपने सारी मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड सीट्स को एक तरफ कर दिया और बाकियों के लिए आपने अपना समीकरण बीजेपी के लिए आसान कर दिया. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस?
1: राहुल जी, अपर असम में तो मुस्लिम था ही नहीं, सो व्हाई दे लॉस्ट अपर असम?
9: करेक्ट.
1: सो डीलिमिटेशन वॉज डन टू रेशनलाइज द सीट्स, उसके उपसिवा तो कुछ नहीं था. अगर डीलिमिटेशन का इफेक्ट होते थे तब अपर असम में भी उसको दिखाई देना चाहिए था, बिकॉज अपर असम में तो कोई मुस्लिम बहुल जगह था ही नहीं, वहाँ में भी डिलिमिटेशन हुआ, फिर भी तो कांग्रेस वहाँ में भी तो नहीं जीते.
9: अच्छा,
1: तो डिलिमिटेशन का साथ इफ यू लुक आपका टीम है दैट
9: बोलिए,
1: आपका टीम देख सकता है कि बीजेपी एंड NDA है स्कोर 49% ऑफ द पॉपुलर वोट, तो हमें सीट ही नहीं बढ़े, हमारा वोट भी बढ़े अब तो 50%.
9: मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूं, ये जो बात कर रहे हैं हेमंत दादा, डैशबोर्ड पे देखिए, ये है वोट्स का 48.6, 48.6%, पिछली बार से 4.1% ज्यादा. कांग्रेस के 36, उनके भी 4.5 बढ़े, लेकिन गैप बहुत बढ़ गया. AUDF 5.5% पे. जब मैं आता हूँ गुवाहाटी, मुझे हर बार एक चीज का एहसास होता है हेमंत दादा, कि आप भाजपा तो चलाते ही हैं लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस का भी एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो कि आपसे टच में रहता है, आप ही उनको बता रहे होते हैं क्या करना है क्या करना है. हमने आपके साथ पावर प्ले किया था कैंपेन के दौरान, प्रद्युत बोरदोलई हमारे साथ से बातें कर रहे हैं, मैं जब तक मैं दिल्ली लौटा तब तक वो आपके पास आ गए थे. तो अब क्या सिचुएशन है, कांग्रेस हिमंता मुक्त हो गई है या अभी भी कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो हैं तो कांग्रेस में लेकिन बात आपकी सुन रहे हैं?
1: अभी जो 19 MLA जीते हैं इसमें से मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है.
9: कितना दोस्त है आपका
1: कांग्रेस का?
9: कितना कितना 19 में कितने आपके हैं?
1: से
9: छे
1: सिक्स सिक्स
9: एक सेकेंड. तो आप कह रहे हैं कि जब आप चाहें इन छह को आप अपनी तरफ खींच सकते हैं?
1: तो व्हेनेवर प्रेसिडेंट इलेक्शन विल टेक प्लेस यू विल सी दैट वी विल गेट 6 मोर वोट.
9: ये देखिए कह रहे हैं कि 19 है, 19 में से छह इनके हैं. सर ये होता कैसे, ये तो आप ही करते हैं, ये उससे ना कोई OTT सीरियल के जो मतलब वो किरदार होते हैं मुझे वो समझ में आता है. मैं अपनी पार्टी भी चलाता हूँ, ऑपोजिशन भी मैं ही चलाता हूँ.
1: पूरा पूरा ये मैं 22 साल कांग्रेस में रहा, सो आई कीप ऑन दैट लाइव लिंक ओपन. ये सब कांग्रेस में मतलब मैं ही ये लोगों को आगे किया था, मेरा ही मतलब उनका पॉलिटिकल ग्रोथ में I played some role at some point of time. Yeah, they have helped me. I help them. We grow together. So there is many equation. It is a small state. So we know each other. So ये बहुत बड़ा अंक नहीं है. और असम में भी सारे लोग जानते हैं कि ये से हिमंत का साथी है.
10: नहीं नहीं, अगर गौरव गोगोई या राहुल गांधी की टीम देखेगी एनडीटीवी का इंटरव्यू, वो कहेंगे कि हेमंता दा माइंड गेम्स खेल रहे हैं, साइकोलॉजिकली साइओप्स कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन डराने की कोशिश कर रहे हैं कि 19 तो जीते उनमें भी 6 आपके आप कह रहे हैं।
1: माइंड गेम्स तो आपने देखा ही है, यू हैव सीन भूपेन बड़ा, यू हैव सीन प्रदुत बरदलोई, सो दिस इज नो लॉन्गर, आई डोंट थिंक दे विल सी इट इज अ माइंड गेम्स, बिकॉज मैं तो आपको बोल भी दिया हूँ कि राष्ट्रपति का चुनाव में से वोट हमको और ज्यादा मिल जाएगा।
10: बाप रे, बड़े खतरनाक हैं। अच्छा मैं एक दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, एक बार मैं इनके पास गया था तो मिल रहे थे, पूरा समझा रहे थे कि क्या करना है कैसा करना है। मैंने पूछा ये है कौन जो दो लोग आए हुए हैं, बाद में हेमंता दा कहते ही AUDF के कैंडिडेट हैं। अब ये जो दो AUDF वाले आए हैं वो एक्चुअली AUDF के या वो भी आप ही के ही हैं?
1: AUDF में वही है, दो ही विधायक है, एक तो अजमल साहब खुद है और एक है। ठीक है, सबका साथ एट माई पर्सनल लेवल मेरा सबका साथ ठीक होता है, मैं बहुत पॉलिटिकल एनिमिटी को कल्टीवेट नहीं करता हूँ, मेरा हमेशा अप्रोच होता है कि सबको दोस्त बना के रखो।
10: अच्छा एक आखिरी सवाल, अब तो एक तरीके से वेस्ट बंगाल से भी, क्योंकि पहले आसाम एक तरीके से गेटवे बन गया था नॉर्थ ईस्ट के लिए, वहाँ पे आ रहा था, अब चूंकि बंगाल में कॉम्पिटिशन है तो आपको लगता है अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन भी होगा बंगाल से?
1: नहीं, बंगाल विनिंग इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर असम। अभी जैसे असम से जो भी हमें करना है, इवन एक ऑप्टिकल फाइबर भी बैठाना है, केबल भी लाना है, इट विल ऑलवेज कम थ्रू बंगाल। एंड बंगाल हमें राइट टू एक्सेस नहीं देते थे, हमारे जो सामान आते थे वो भी बंगाल से आते थे, हमको बहुत दिक्कत होते थे। सो गवर्नमेंट इन बंगाल विल एक्सेलरेटेड द पेस ऑफ डेवलपमेंट इन असम।
10: चलिए एक बंगाल का मैं बड़ा क्यूरियस हूँ जानने के लिए, जिस तरीके से तमिलनाडु में विजय जीते उसको आप कैसे देखते हैं? एकदम एक तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी में जेनजी मोमेंट हो गया कि दोनों द्रविडियन पार्टियों की लड़ाई थी, बीजेपी ADM के साथ था और जीता एक सिनेमा का सुपरस्टार और इंडिया का जेनजी मोमेंट, उस पर आप कैसे देखते हैं?
1: मेरा थोड़ा व्यू अलग है। आई थिंक तमिलनाडु हैज ऑलवेज वोट फॉर द पीपल हु आर सुपरस्टार इन द स्क्रीन। आई थिंक दैट्स द ट्रेडिशन यू हैव सीन सिंस लॉन्ग, जयललिता, करुणानिधि, यू हैव सीन इट, MGR। आई थिंक दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट लिगेसी। Tamil Nadu politics is always dominated by superstar in the screen. I think more than Gen Z, I think it is a renewal of MGR moment.
10: आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु में सुपरस्टार कल्चर है। मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कैंपेन और कैंपेन के बाद की वो तस्वीरें जहां आसाम का जो
1: ऐसे में बहुत वो सब में मैं नहीं बोलता हूं। मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि तमिलनाडु पॉलिटिक्स में स्क्रीन का लोग सुपरस्टार हमेशा इन्फ्लुएंस करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिशियन है जो फिल्म से ही पॉलिटिक्स में आते हैं। एंड MGR मोमेंट में मेरा मानना है कि दिस इज अ सेकेंड MGR मोमेंट इन तमिलनाडु, कि एक सुपरस्टार ने बहुत डोमिनेट किया था, नेक्स्ट सुपरस्टार है अराइव्ड।
10: मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ, अगर तमिलनाडु के वोटर्स सुपरस्टार से प्रभावित हैं तो आसाम के वोटर्स एक पॉलिटिकल सुपरस्टार से प्रभावित हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक नेता है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, ये अपना अलग तरह का सुपरस्टारडम है, पॉलिटिकल सुपरस्टारडम।
1: अगर रजनीकांत जी कभी तमिलनाडु में चुनाव लड़ते थे, आई थिंक ही वुड हैव आल्सो स्वेप द इलेक्शन। दैट इज माय ऑब्जर्वेशन, आई मे नॉट बी करेक्ट।
10: नहीं, आप देख नहीं पा, आप शायद देख नहीं पा रहे, मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी स्क्रीन पे वो तस्वीरें चला रहा हूँ जिसमें आसाम का पॉलिटिकल सुपरस्टार गा रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है। जब इस तरह का सुपरस्टार हो तो रजनीकांत के लिए या MGR के लिए या विजय के लिए फिर जगह कहाँ बचती है? आप ही सब कर रहे हैं, ऑल इन वन पैकेज है, ऑपोजिशन भी चला रहे, सरकार भी चला रहे, गाना भी गा रहे, डांस भी कर रहे हैं, नाच भी रहे, बताइए सभी कुछ तो आप ही कर रहे हैं।
1: चलिए एक आप एक आसाम थोड़ा सा हटके कर रहे हैं, यहाँ में स्क्रीन का सुपरस्टार का जगह में हम लोग पॉलिटिशियन ही नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ। कम से कम वी आर नॉट अलाउ वैक्यूम टू बी एग्जिस्टेड।
10: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, वी विश यू ऑल द बेस्ट। हिमंत बिस्वा शर्मा, आपने वक्त निकाला, आपने आगे का असम का एजेंडा क्या रहेगा उस पर बात की, हमारे साथ आप जुड़े NDTV पे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।
0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
11: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ CPM एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
12: Welcome back. Let's now focus on Tamil Nadu, where there's been a political reset with superstar Vijay delivering his biggest blockbuster in the state, securing 108 seats, emerging as the single largest party. Vijay will now write to the governor to stake claim to form government. TVK will also ask for 2 weeks' time to prove its majority. Remember, they are 11 short of that majority mark. Vijay has held key meetings today with the winning MLAs at party headquarters before claiming stake to form government. He also paid tribute to Periyar at the party's headquarters in Chennai. In fact, he paid tribute to, you know, the five icons really considered by the TVK. Now, as government formation talks are heating up, several parties actively trying to woo Vijay and the TVK. No one loves a winner more than politicians. PMK has reached out while Congress has opened channels for support. Meanwhile, Congress, Tamil Nadu in charge, in fact, made a big claim saying that the leader always wanted an alliance with the TVK, but that it was the central leadership which chose to go with the DMK. Let's listen in to some of the big voices through the day.
13: During one of his campaigns in Tirunelveli, Mr. Vijay had said, the real Congress is with us. Do you think if the Congress had allied with you, would have been a different scenario now? A clean
12: West Asia is on the edge again, with UAE claiming that Iranian drones targeted its Fujairah port. Images have now also emerged of a vessel on fire as tensions escalate. Now, NDTV reports from the war zone. NDTV's Akhil is on ground zero. He's reached the Sharif University, one of the largest technical universities in Iran, that was hit in the United States-Israel airstrikes. Watch this.
14: Right now, the NDTV team has arrived at Sharif University campus. Behind me, you can see the visuals over here, where the debris can be seen. And this is the frontal part of this building. And behind this very building, which was completely destroyed due to the aerial attack in a joint campaign by the US and Israeli forces, behind this, there's another building which was destroyed. So this was the AI data center. And the impact of this attack was so intense, the magnitude of this attack was so intense that nothing can be seen. Few things you can just recognize. There you can see the Iranian flags over there, which can be barely seen. Apart from that, few of the electronic items can also be seen, some water bottles. Apart from that, if you see, the other daily usage item was also present over here. I have been speaking to some of the individuals who were part of the university. They are saying that when that incident has taken place, no one was present at that moment because it was late at night at around 2 a.m. Here you can see, this is one of the books which can be seen. This is just part of the debris over here. And apart from that, towards my left, if you see, this left portion of this entire building, the AI data center, has completely been demolished due to the impact of this entire aerial attack. And towards my right, just opposite to this AI center, is the mosque. So some portion of this mosque has also got impacted in this area.
12: Time for us to slip into another short break. News and updates continue here on NDTV.

0: मेरा नहीं लगता है कि आपको असम का रिजल्ट कोई व्यक्ति का भविष्य का साथ जोड़ना चाहिए। असम इज ए वेरी स्पेशियल केस। राहुल, मैं आपको भी जब भी मिलता हूँ हमेशा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। असम का लोग एक बहुत बड़ा समस्या में है। हम लोग अपना आइडेंटिटी को लेके हमारा भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित रहता हूँ, बिकॉज वी आर नाउ लूजिंग द डेमोग्राफिक बैटल बहुत फास्ट। टुडे असम विल हैव 40% मुस्लिम पॉपुलेशन इन दिस सेंसस, रफली अराउंड 40%। 12 से 13 जिला में हम लोग वी हैव बिकम कम्प्लीट माइनॉरिटी। सो हर चुनाव असम का लोग अपना अस्तित्व का साथ जोड़ते हैं और हमारे आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग वोट डालते हैं। सो चुनाव जीतने और हारने ये दोनों का साथ एक बहुत बड़ा बातें छुपा होते हैं कि क्या असम फाइनली इट विल बिकम ए मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। तो हमारे शंका हमारे चिंता देश का प्रदेशों से काफ़ी अलग है। सो दिस इज नॉट ए विक्टोरी प्रोबेबली। ये हमारे जो जूत चलता है असम का अंदर, इसका और एक चैप्टर है।
1: हेमंतदा, जहां एक तरफ आप अपने आप को एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे साबित कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स टाइप की इंडस्ट्रीज आप असम में लेके आ रहे हैं जिसके लिए आपकी तारीफ भी हो रही है, आप पे कैंपेन के दौरान आरोप लगा हेट स्पीचेस का कि बहुत ही कॉम्युनली डिवाइसिव आपने भाषण दिए। अब जब आप उस पर लुक बैक करते हैं तो आपको लगता है कि क्या वो गलती थी, क्या आपको लगता है कि चुनाव की हीट और डस्ट में इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए? क्योंकि जिस तरह के आप प्राइवेटली रहते हैं, आज आप गवर्नेंस में कर रहे हैं, कैंपेन के दौरान जो हुआ, जो चार्जेस लगे, उस पर आपका क्या कहना है?
0: पहला बार मुझको लगता है आपने असम चुनाव बहुत क्लोजली फॉलो इस बार नहीं कर सका, बिकॉज बंगाल वाज डेफिनेटली ए इम्पोर्टेंट इलेक्शन। असम में कोई हेड स्पीच नहीं हुए, हमारा चुनाव नाचते हुए गाते हुए, वी एन्जॉयड द इलेक्शन लाइक ए फेस्टिवल। एंड इलेक्शन में कोई एलिगेशन काउंटर एलिगेशन नहीं था, इट वॉज ए कम्प्लीट वी ऑब्जर्व द इलेक्शन, वी एन्जॉय द इलेक्शन एज ए फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ में कोई हेड स्पेस नहीं था, किसी का ऊपर आरोप भी नहीं थे, कोई झमेला, कोई नथिंग। इट वॉज सिंपली हम लोग चुनाव मंच में जाते हैं, गाना गाता हूँ, डांस करता हूँ, लोग भी साथ में डांस करते हैं और सभा समाप्त हो जाते हैं। कोई मामले ही नहीं हुआ इस बार इस दौरान। और बाकी आप जो हेड स्पीच मानते हैं, मैं मेरा स्पीच हमेशा सोच के देता हूँ और मैं जो भी बोलता हूँ वहाँ से बैकट्रैक करने का कोई सवाल ही नहीं है। व्हाट एवर आई डिलीवर स्पीच, आई स्टैंड बाई इट एंड आई ओ इट कम्प्लीटली।
1: नहीं, अभी जैसे वो पूरा कांग्रेस के जो चीफ स्पोक्सपर्सन है पवन खेरा का मामला है, उनको एंटिसिपेटरी बेल तो मिली, अब ये क्या वो चुनावी चुनाव का मामला था या उस केस को आप आगे भी लेके जा रहे हैं? मैं कल उनसे बात कर रहा था, उनका तो हुलिया ही पूरा चेंज हो गया था, वो इतने स्ट्रेस में थे, आपने आसाम पुलिस उनके पीछे लगा दी।
0: नहीं, आसाम पुलिस अभी भी उनका पीछे में लगा हुआ है। आई थिंक ही विल बी सर्व नोटिस टू अपीयर बिफोर पुलिस स्टेशन, बिकॉज हाई कोर्ट ने उनका कोई केस खारिज नहीं किया है। थोड़ा अभिषेक मनु सिंह भी ने थोड़ा लोगों को डिस्टोर्ट करने का कोशिश किया, ही हैज जस्ट गॉट ए एंटिसिपेटरी बेल बट ही वॉज आस्क्ड टू जॉइन इन द इन्वेस्टिगेशन। सो वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा, फिर देखा जाएगा कैसे केस आगे बढ़े। बट दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट केस, दिस इज ए केस टू सेव आवर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। बिकॉज आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी गृह मंत्री जी का एक स्पीच यही लोगों ने डिस्टोर्ट किए थे। इस बार भी फेक डॉक्यूमेंट से इलेक्टोरल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास हुए, मतलब दिस डिस्टोर्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोर्स डॉक्यूमेंट्स नाउ बिकम ए पार्ट ऑफ कांग्रेस टूल किट। हमें देखना है वेदर इट इज ए पवन खेरा और उसका पीछे कौन है, बिकॉज मैं नहीं मानता हूँ कि ये कागज लेके पवन खेरा ने खाली एक राज्यसभा सीटों के लिए एक मिस एडवेंचर किया। दिस मस्ट बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी।

0: तो हमें यह केस का गहराई में जाना है।
1: नहीं, एक सवाल और इससे, जैसे आपने कुछ चार्जेस लगाए गौरव गोगोई पे, उनकी वाइफ पे, वो एक पॉलिटिकल चार्ज था जो कि कैंपेन में हुआ, उन्होंने उसका जवाब दिया, यहाँ पे पवन खेरा ने लगाया।
0: राहुल जी ऐसा कृपा करके नहीं, ऐसा मत बोलिए राहुल जी, ऐसा आप लोग बहुत चीज को सिंप्लीफाई कर देते हैं। हिमंत बिश्व शर्मा हैज नॉट लेवल एनी एलिगेशन अगेंस्ट गौरव गोगोई वाइफ, आई लेवल एलिगेशन सस्टेंशिएट बाई डॉक्यूमेंट्स, आई एक्सपोज द लिंक बिटवीन पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट एंड मिस्टर गौरव गोगोई, एंड इट वॉज अ जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन, एलिगेशन नहीं है ये अभी दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज है, एंड मिस्टर गौरव गोगोई हैज नॉट डिस्टोर्टेड और रिफ्यूटेड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। हमने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया नहीं हूं, हमने कोई उनका गलत पासपोर्ट लेके आपका सामने नहीं आया हूं, उनने जो पाकिस्तान किया है वो वीसा में कोई गलत वीसा लेके नहीं आया हूं। सो देयर इज नो पैरेलल कि मैं उनका वाइफ का बारे में बोला इसलिए मेरा वाइफ का बारे में वो बोलेगा, ये बात इतना सिंपल नहीं है। मेरा वाइफ का खिलाफ इफ यू हैव ए डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए, आपके फोर्जरी किया क्या? मैंने तो कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज नहीं किया, हम तो आई एम ड्यूटी बाउंड कि अगर कोई व्यक्ति का पाकिस्तान से लिंक हो इन्वेस्टिगेशन करके भारत सरकार को बताना, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
1: अच्छा ये बताएं हेमंत दा कि हैट्रिक होने के बाद इस बार के आपके टर्म में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या हैं, क्योंकि पिछले टर्म में भी हमने देखा कि जिस तरीके से जीएसडीपी जो स्टेट की ग्रोथ की विकास दर है वो ज़्यादा थी, आसाम और तेजी से बढ़े, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड हो, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, क्या लोग आपसे एक्सपेक्ट करें?
0: देखिए आसाम एक भारत के उभरते हुए इकोनॉमी है, एक शाइनिंग स्पॉट है, और आसाम में बहुत तरक्की हो रहा है, बट इसकी स्पीड को एस्केलेट करना है, सरकार होने दीजिए, विल कम आउट विथ ए वेरी पॉजिटिव एजेंडा, और मुझे लगता है और 5 साल आसाम में यही पेस में काम होगा तो द आइडेंटिटी ऑफ आसाम विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट।
2: The results with the BJP winning more than 200 seats clearly answer those questions. Our teams on the ground, in the studios, in the newsroom, we keep tracking every twist. We try to stay away from the noise, try to use the election analytics to bring the coverage together for you. 90% voting is not common. That's 140 elections with less than 70%. Tuvendu Adhikari leading at this moment. 5 states, 824 assembly seats, an election that felt more like a war.
3: Again, going to shift focus to West Bengal, bring in our colleagues from the ground as well.
2: We've got some breaking news just coming in.
4: Kanchan Gupta to wear this morning. Green was not one of them. Kanchan, what's going on here?
3: Khela ho be.
5: Vijay is finishing off every existing political force.
4: This holds, Pradeep Gupta will be dancing. Joining us now, live and exclusive on NDTV, the architect of this historic victory.
6: Janta ko badhai de raha hu.
4: To all our viewers who've joined us in this long day, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
7: Bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
8: Illegal migrant. ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए

0: The results with the BJP winning more than 200 seats clearly answer those questions. Our teams on the ground, in the studios, in the newsroom, we keep tracking every twist. We try to stay away from the noise, try to use the election analytics to bring the coverage together for you. 90% voting is not common. That's 140 elections with less than 70%. Tuvendu Adhikari leading at this moment. 5 states, 824 assembly seats, an election that felt more like a war.
1: Again, going to shift focus to West Bengal, bring in our colleagues from the ground as well.
0: We've got some breaking news just coming in. Kanchan Gupta to wear this morning. Green was not one of them. Kanchanda, what's going on here?
1: Khela ho be.
2: Vijay is finishing off every existing political force.
0: This holds, Pradeep. Gupta will be dancing. Joining us now, live and exclusive on NDTV, the architect of this historic victory.
3: Janta ko badhai de raha hu.
0: To all our viewers who've joined us in this long day, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
4: Bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
5: Illegal migrant. ये बांग्लादेश की घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
6: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
1: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
7: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
8: आई थिंक इट विल बी गुड to bring back the confidence of industry.
9: The people of Kerala understood.
0: इस वक्त हमारे साथ एनडीटीवी नेटवर्क पर मौजूद हैं गुवाहाटी से लाइव और एक्सक्लूसिव आसाम के राजनीतिक बादशाह, हैट्रिक दर्ज करने वाले और हैट्रिक के दौरान सेंचुरी मारने वाले हेमंत बिश्व शर्मा इस वक्त हमारे साथ एनडीटीवी पर मौजूद हैं। दो मैप आपके स्क्रीन पर हैं, ये 2021 का आसाम का पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पे लोअर आसाम रीजन में फिर भी कांग्रेस काफ़ी हद तक दिख रही है, और ये है 2026 का राजनीतिक मैप, जहाँ जो बची कुची सीटें थी कांग्रेस की वो भी

0: पहले की तुलना में पहले ही 30 थी, अब और भी घट के 21 हो गई। हेमंत बिस्वा शर्मा सेंचुरी, वो भी हैट्रिक के साथ, लोगों को लग तमिलनाडु में क्या होगा इस पे अनिश्चितता थी, पश्चिम बंगाल को लेके सस्पेंस था, केरल में कितनी टाइट फाइट होगी। अगर लोग कन्विंस थे कि कहीं पे एक वर्डिक्ट काफी क्लियर है वो आसाम का, लेकिन आपको लग रहा था कि सेंचुरी, इतनी बड़ी जीत आपकी दर्ज होगी 73 से 102 पार, स्वागत है और मुबारकबाद।
1: For us, it was expected primarily because in 2024 Lok Sabha election, we registered victory in 94 assembly seats. So we were around 100 number right from the 2024 Lok Sabha election. So we further consolidated and crossed 100 and we reached 102. So in Assam, it was not a major surprise. It was more or less expected that we will be somewhere around 95 to 100.
0: मेरे पास 2024 के लोकसभा के भी आंकड़े हैं, ये देखिए मैप, उसमें 88 थी बीजेपी की खुद की और अब हो गई हैं 102, तो काफ़ी हद तक जो सैफरन स्वीप थी आसाम में वो और भी बढ़ गई है। जब हैट्रिक के साथ आता है, साधारण तौर पे हैट्रिक के वक्त पे एक एंटी इनकम्बेंसी सी बिल्ड हो जाती है, लेकिन आपने तो एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को धो डाला, कांग्रेस को धो डाला, यहाँ तक कि गौरव गोगोई भी हार गए जोरहाट में। मेरे को याद है आपसे मुलाकात हुई थी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले, आपने बोला था राहुल मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, तुम्हें मुझसे नोट करा लो, इसको मैं हरा दूंगा, कुछ भी हो जाए गौरव गोगोई जोरहाट में नहीं, तब तो जीत गए, इस बार आपने हरा दिया। क्या किया आपने इस बार जो पिछली बार नहीं हो पाया?
1: आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज नॉट टेस्टेड, बट इन लास्ट वन ईयर पीपल ऑफ जोरहाट कुड सी हिम फ्रॉम अ वेरी क्लोज क्वार्टर एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज ओन सीट, ही लॉस्ट 9 out of 10 in the entire Lok Sabha constituencies. Today, in his constituency, there is only one MLA, that too from an alliance party. Congress has now no MLA from the entire Jorhat Lok Sabha constituency. So it was not a defeat, it was a complete defeat in that sense of term.
0: अच्छा हेमंत दा, इस वक्त आप एनडीटीवी के सारे चैनलों पे लाइव हो, आप एनडीटीवी इंडिया पे भी लाइव हो, इसलिए मैं आपसे हिंदी में सवाल कर रहा हूँ और मेरा अनुरोध है कि आप हिंदी में जवाब दें ताकि हम सब जगह आपको अच्छे से दर्शकों को दिखा भी पाएं। पहले जिस तरह की डोमिनेंस आपकी आसाम में हो गई है, वैसे बहुत ही कम प्रेसिडेंट्स हैं बीजेपी में और इस वक्त की राजनीति में जो कि अपने राज्य को और अपने पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करता है। जब आप अपने प्रोग्रेशन को देखते हैं, आपके हिसाब से असम की जनता ने इस मैंडेट के जरिए हेमंत बिस्वा शर्मा के राजनीतिक भविष्य के बारे में क्या मैसेज दिया है?
1: मेरा नहीं लगता है कि आपको असम का रिजल्ट कोई व्यक्ति का भविष्य का साथ जोड़ना चाहिए। असम इज ए वेरी स्पेशियल केस। राहुल मैं आपको भी जब भी मिलता हूँ हमेशा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। असम का लोग एक बहुत बड़ा समस्या में है। हम लोग अपना आइडेंटिटी को लेके, हमारा भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित रहता हूँ, बिकॉज वी आर नाउ लूजिंग द डेमोग्राफिक बैटल बहुत फास्ट। टुडे असम विल हैव 40% मुस्लिम पॉपुलेशन इन दिस सेंसस, रफली अराउंड 40%। 12 से 13 जिला में हम लोग we have become complete minority. So हर चुनाव असम का लोग अपना अस्तित्व का साथ जोड़ते हैं और हमारे आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग वोट डालते हैं। So चुनाव जीतने और हारने, ये दोनों का साथ एक बहुत बड़ा बातें छुपा होते हैं कि क्या असम फाइनली इट विल बिकम ए मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। तो हमारे शंका, हमारे चिंता देश का प्रदेशों से काफ़ी अलग है। सो दिस इज नॉट ए विक्टोरी, प्रोबेबली ये हमारे जो जूत चलता है असम का अंदर, इसका और एक चैप्टर है।
0: हेमंत दा, जहाँ एक तरफ आप अपने आप को एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे साबित कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स टाइप की इंडस्ट्रीज आप आसाम में लेके आ रहे हैं जिसके लिए आपकी तारीफ भी हो रही है, आप पे कैंपेन के दौरान आरोप लगा हेट स्पीचेस का कि बहुत ही कम्युनली डिवाइसिव आपने भाषण दिए, अब जब आप उस पर लुक बैक करते हैं तो आपको लगता है कि क्या वो गलती थी, क्या आपको लगता है कि चुनाव की हीट और डस्ट में इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की चीज़, जिस तरह के आप प्राइवेटली रहते हैं या जो आप गवर्नेंस में कर

0: इस बार भी फेक डॉक्यूमेंट से इलेक्टोरल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास हुए, मतलब दिस डिस्टोर्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोर्स डॉक्यूमेंट्स नाउ बिकम ए पार्ट ऑफ कांग्रेस टूल किट। हमें देखना है वेदर इट इज ए पवन खेरा और उसका पीछे कौन है, बिकॉज मैं नहीं मानता हूँ कि ये कागज़ लेके पवन खेरा ने खाली एक राज्यसभा सीटों के लिए एक मिस एडवेंचर किया। दिस मस्ट बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो हमें ये केस का गहराई में जाना है।
1: नहीं, एक सवाल और इससे, जैसे आपने कुछ चार्जेस लगाए गौरव गोगोई पे, उनकी वाइफ पे, वो एक पॉलिटिकल चार्ज था जो कि कैंपेन में हुआ, उन्होंने उसका जवाब दिया, यहाँ पे पवन खेरा ने लगाया।
0: राहुल जी, ऐसा कृपा करके नहीं, ऐसा मत बोलिए राहुल जी, ऐसा आप लोग बहुत चीज को सिंप्लीफाई कर देते हैं। हिमंत बिश्व शर्मा हैज नॉट लेवल एनी एलिगेशन अगेंस्ट गौरव गोगोई वाइफ। आई लेवल एलिगेशन सस्टेंशिएट बाई डॉक्यूमेंट्स। आई एक्सपोज द लिंक बिटवीन पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट एंड मिस्टर गौरव गोगोई, एंड इट वॉज ए जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन। एलिगेशन नहीं है ये अभी दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज है। एंड मिस्टर गौरव गोगोई हैज नॉट डिस्टोर्टेड और रिफ्यूटेड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। हमने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया नहीं हूं, हमने कोई उनका गलत पासपोर्ट लेके आपका सामने नहीं आया हूं। उनने जो पाकिस्तान किया है वो वीसा में कोई गलत वीसा लेके नहीं आया हूं। सो देयर इज नो पैरेलल कि मैं उनका वाइफ का बारे में बोला इसलिए मेरा वाइफ का बारे में वो बोलेगा। ये बात इतना सिंपल नहीं है। मेरा वाइफ का खिलाफ इफ यू हैव ए डॉक्यूमेंट्स, आप दिखाइए आपके फोर्जरी किया किया। मैंने तो कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज नहीं किया। हम तो आई एम ड्यूटी बाउंड कि अगर कोई व्यक्ति का पाकिस्तान से लिंक हो, इन्वेस्टिगेशन करके भारत सरकार को बताना, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
1: अच्छा, ये बताएं हेमंत दा कि हैट्रिक होने के बाद इस बार के आपके टर्म में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या हैं, क्योंकि पिछले टर्म में भी हमने देखा कि जिस तरीके से जीएसडीपी, जो स्टेट की ग्रोथ की विकास दर है, वो ज़्यादा थी। आसाम और तेजी से बढ़े, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड हो, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, क्या लोग आपसे एक्सपेक्ट करें?
0: देखिए, आसाम एक भारत के उभरते हुए इकोनॉमी है, एक साइनिंग स्पॉट है, और आसाम में बहुत तरक्की हो रहा है, बट इसकी स्पीड को एस्कालेट करना है। सरकार होने दीजिए, विल कम आउट विथ ए वेरी पॉजिटिव एजेंडा, और मुझे लगता है और 5 साल आसाम में यही पेस में काम होगा तो द आइडेंटिटी ऑफ आसाम विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट।
2: Welcome back. Let's now focus on Tamil Nadu, where there's been a political reset with superstar Vijay delivering his biggest blockbuster in the state, securing 108 seats, emerging as the single largest party. Vijay will now write to the governor to stake claim to form government. TVK will also ask for 2 weeks' time to prove its majority. Remember, they are 11 short of that majority mark. Vijay has held key meetings today with the winning MLAs at party headquarters before claiming stake to form government. He also paid tribute to Periyar at the party's headquarters in Chennai. In fact, he paid tribute to, you know, the five icons really considered by the TVK. Now, as government formation talks are heating up, several parties actively trying to woo Vijay and the TVK. No one loves a winner more than politicians. PMK has reached out while Congress has opened channels for support. Meanwhile, Congress, Tamil Nadu in charge, in fact, made a big claim saying that the leader always wanted an alliance with the TVK, but that it was the central leadership which chose to go with the DMK. Let's listen in to some of the big voices through the day.
3: During one of his campaigns in Tirunelveli, Mr. Vijay had said, the real Congress is with us. Do you think if the Congress had allied with you, would have been a different scenario now, a clean sweep?
4: Even then, it's a clean sweep. Despite the Congress joining us or not, even then, we have had a clean sweep. I think Congress cadres, the actual cadres.
2: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. With me, Tanisha Avasthi. Lots lined up for you on this